0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Cadet College Jagbabad. अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल
3: और दाखिला टेस्ट का इनेकाद 12 अप्रैल 2026 को होगा। राबता 0333-733-1172।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: गोदियार में MNA डॉक्टर महेश कुमार मलानी के पर्सनल असिस्टेंट सिराज सुमरो की मुबैना इंतकामी कार्रवाई खिलाफ सुमरा बिरादरी के एक धुर्जो सुबह का हयल धरणो जारी। थरकोल रोड से गाड़ियों जो कतारू लगे पयू। बिन धुरन में झेड़े दौरान एक धुर जा 13 जना जख्मी थे बाद मुतासिर। थरकोल रोड से फंगारो पुलिस चेकपोस्ट वट धरणो हयो। सुबह का लगल धरणे में गोठान जो वो अंग शरीक मुजाहिरन सिधियों गोलियों हलाए बारन समेत 13 जणन के जख्मी किया वो। हू इलाके में वही खूनरेजी करण चाहे तो। सिराज सुमरो बियन खिलाफ केस दाखिल थियण ताई धरणो जारी रहंदो।
6: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ना तो परहेजगार हैं ना इंसाफ कर रहे हैं। कल रात रिजल्ट आया CC 2024 का, जिसमें से सिर्फ 70 लोग पास हुए। हम इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्या कह रहे हैं, जो रिजल्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं बना रहे हैं। हमें ये लगता है, इरादा और नियत रखते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे इस रिजल्ट के खिलाफ। सिविल सोसाइटी के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी आवाज का हिस्सा बने। और ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलसल मेरिट की वायोलेशन हो रही है, जो हमें लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाए।
5: पंजा नवाजी ए मेरिट की लताड़ नामंजूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के गडल चिटाभेटी इम्तिहान में शिरकत कदड़ उम्मीदवार नतीजन के तकरारी करार दई एहतजाजी तहरीक शुरू कर छी। नतीजन के अदालती जांच कराने जो मुतालबो। उम्मीदवार हथन में प्ले कार्ड खड़ी SSP ऑफिस बहरा एहतजाजी मुजाहरो कर धरणो हयो। उम्मीदवार जो चवण आए तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वारा मेरिट न पैसा वारे उसूल से यकीन रखन था। नतीजन के शफाफ जांच कराई वे सजे मामले की अदालती जांच कराने जो मुतालबो। उम्मीदवार नतीजन में बेजाबदगिन मेरिट की लताड़ कई वही है। खदशन के संजीदगी से न वरतो वो तो एहतजाज दायरो वधायो वेंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में हेल्थ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 16 की लिखित टेस्ट इंटरव्यू नतीजन से भी खदशा जाहिर। 44 मार्कू खड़ उम्मीदवार के इंटरव्यू में 85 मार्कू दई पास करण भी केतन ही सवाल के जन्म दई छो। जिन उम्मीदवार जो लिखित टेस्ट में मार्क्स घट हुयू उन्हें इंटरव्यू में बीण से मार्कू दई पास किया वो। लिखित टेस्ट में वड्यू मार्कू खड़ जो इंटरव्यू में इंतई घट मार्कू डी व्य। उम्मीदवार है तो इम्तिहान में मनपसंद उम्मीदवार के पास कराए मेरिट जो जनाजो कढ़ो वो है। SPSC जा तकरारी नतीजा रोके मामले की अदालती जांच कराए खदशा खत्म कराए वन। पाकिस्तानी मईशत लाइ चंगी खबर। IMF पाकिस्तान लाइ 1.5 अरब डॉलर्स किस्त की मंजूरी दई छी। नाणे वारे वजीर पारा तस्दीक। ज़रन मूजिब IMF 1 अरब डॉलर AFF प्रोग्राम तहत मौसमियाती तब्दीले के असरन के मुंह डेण लाइ 20 करोड़ डॉलर्स जारी करण की मंजूरी डिनी वही। IMF के जायजा मिशन पाकिस्तानी मईशत जो जायजो वठण बाद कर्ज जारी करण की सिफारिश कई हुई। मौजूदा प्रोग्राम तहत पाकिस्तान के मजबूती तौर 3.5 अरब डॉलर्स मिली चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकन में ऑपरेशन। बिन धारदार कार्रवाई में 5 खारजी दहशतगर्द मारजी पया। ISBR मूजिब डेरा इस्माइल नाटांग में फितनातुल खवार के दहशतगर्द के ठिकाणन के असराइते नमूने निशानो बणायो वो। मारजी वियल 5 ही दहशतगर्द केतरन ही दहशतगर्द कार्रवाई में बुलवस हुआ। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब कार्रवाई से फोर्सेज के भेटा पेश। सदर आसिफ जरदारी है तो मुल्क में दहशतगर्द के नासूर के मुकमल खात्मे तक कार्रवाई जारी रखी वजन। भारतीय सरपरस्ती में सरगरम दहशतगर्द अंसर खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज जो कामयाब कार्रवाई कौमी अजम जो अकास है। जंग के खात्मे के हतमी मुआदे से पहुंचने लाए अमरीका के पैं तजवीजन ईरान जो जवाब जो इंतजार। ईरानी क़यादत अञा को वाज़े फ़ैसिलो न करे सघी। अमरीकी परडे वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अॼु ईरान जो जवाब मिलणु घुर्जे हा, पर हिन वक़्त ताईं को बि जवाब न मिलियो। उमीद आहे त ईरान संजीदा ॻाल्हियुनि तरफ़ वधंदो। गुज़िरियल राति ईरान ते कयल हमला ऑपरेशन एपिफ्यूरी जो हिसो न हुआ। असां ते मिज़ाइल फायर कया वेंदा त जवाब ज़रूर ॾींदासीं। ईरानी परडे वज़ार जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान अमरीकी तजवीज़नि ते गौर करे रहियो आहे, कंहिं हतमी नतीजे ते पहुचंदासीं त उन जो ऐलान कंदासीं। अमरीका ऐं ईरान जा के मुआदे खां अॻु आबनाए हुर्मुज़ में हिक ॿिए मथां हमला। वॉशिंगटन ऐं तेहरान हिक ॿिए जे ॿेड़नि खे निशानो बणाइण सां गॾु हिक ॿिए मथां जंगबंदी जी भञकड़ी जा इल्ज़ाम बि लॻाए छॾिया। अमरीकी फ़ौज पारां कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते हमलनि जी तस्दीक। हिकु माल बरदार जहाज़ ऐं ॿिनि ऑयल टैंकर्स खे बि निशानो बणाए पियो। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त अमरीकी जहाज़नि ते हमलनि बाद कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते ॿिनि हंधनि खे निशानो बणाए वियो। हमलनि जो मक़सदु ईरान सां ॿीहर जंग शुरू करण न आहे। ईरान जे ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मूजिबि अमरीकी हमलनि जो भरपूर जवाब ॾिनो आहे। आबनाए हुर्मुज़ ऐं चाबहार बंदरगाह वेझो अमरीकी फ़ौजी ॿेड़नि खे निशानो बणाए वियो।
7: मटियारी के हो
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
7: KFM 91.6।
8: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते।

0: बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलदीप के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ओला ततमन्नौ, और न करो किस चीज की, मा फद्दलल्लाहु बिही, जो फजीलत दी आस को, अला बाज बाज पर, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से तुम में से कुछ को दूसरों पर फजीलत मिल गई, बड़ाई मिल गई, अहमियत मिल गई, उसकी तमन्ना न करो। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मक तसबू, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। वलिन्निसाई नसीबुम, और औरतों के लिए हिस्सा है, मिम्मक तसबन, उसमें से जो उन्होंने कमाई की। वसअलुल्लाह मिन फदलिह, और अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, अल्लाह से उसका फजल मांगो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिकुल शय इन अलीमा, हर चीज को जानने वाला, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। दरअसल यहाँ पर खानदानी जिंदगी में एक शख्स को दूसरे पर मिलने वाली फजीलत की तरफ इशारा है। माशरती जिंदगी की खुशहाली और अमन का इन्हिसार घरों की खुशहाली पर होता है, और घरों की खुशहाली और अमन का इन्हिसार अच्छे फर्नीचर और अच्छे मकान पर नहीं, उसके अंदर रहने वाले इंसानों के अच्छे अखलाक पर होता है। उस अखलाक में बुनियादी चीज ये है कि हर शख्स दूसरे का मकाम पहचाने, दूसरे का एहतराम करे, जो मकाम अल्लाह ने किसी को दिया है उसको कबूल करे, बजाय इसके कि उसकी तमन्ना करता रहे कि काश ये मकाम मुझे मिल जाता। वो अल्लाह से फजल मांगे, नेकी खैर और भलाई में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करे और मुस्बत सरगर्मियां इख्तियार करे। तो यहां पर दरअसल नेगेटिव सोच से बचने को कहा गया। इंसान मनफी सोच से बचे, दूसरे से हसद न करे, क्योंकि इससे इंसान अपनी सलाहियतों को घुन लगा लेता है, अपनी जिंदगी से सही फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए क्या फरमाया, वला ततमन्नऊ,

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल अबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे,
1: बैंक अल अबीब, रिश्ता भरोसे का।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: कैडेट कॉलेज जगबाबाद। अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल
4: और दाखिला टेस्ट का इनेकाद 12 अप्रैल 2026 को होगा। राबता 0333-733-1172।
5: मिठी में मेरे महेश महलानी इस पर्सनल असिस्टेंट समेत 19 जन खिलाफ केस दाखिल। सुमरत बरादरी वीएन कलाकन का लगल धरनो खत्म। गोट गोदियार में डॉक्टर महेश महलानी एमपी अरबाब लुत्फुल्ला के हामिन में झेड़े दौरान एक दुर्जा 13 जना जख्मी थे हुआ। मुतासिर दुरपारा थरकोल रोड से फिंगारियो पुलिस चेकपोस्ट पर धरनो हयो वियो। एमएलए महेश महलानी के पर्सनल असिस्टेंट सिराज सुमरो समेत 19 जन खिलाफ केस दाखिल थे बाद गुजरियल डी का लगल धरनो खत्म किया वियो। केस में एमएनए जी पीएस सिराज सुमरो मुश्ताक मियादाद अजीज़ुल्लाह गुलाम नबी बिन के नामजद किया वियो।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ना तो परहेज गा रहे ना इंसाफ कर रहे हैं। कल रात रिजल्ट आया सीसी 2024 का, जिसमें से सिर्फ 70 लोग पास हुए हैं। हम इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्या कह रहे हैं, जो रिजल्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं बना रहे हैं। हमें ये लगता है, इरादा और नियत रखते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे इस रिजल्ट के खिलाफ। सिविल सोसाइटी के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी आवाज का हिस्सा बने। और ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलसल लगता है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में हेल्थ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 16 जी लिखित टेस्ट और इंटरव्यू नतीजन ते भी खदशा जाहिर। 44 मार्कू खणंदड़ उम्मीदवार के इंटरव्यू में 85 मार्कू डेई पास करण बि केतरनि सवालनि खे जनम ॾेई छॾियो।

0: कयो पियो लिखत टेस्ट में वॾियूं मार्कूं खणंदड़नि जो इंटरव्यू में इंताई घटि मार्कूं ॾिनियूं वयूं। उमेदवारनि चयो आहे त इम्तिहान में मनपसंद उम्मीदवारनि खे पास कराए मेरिट जो जनाज़ो कढियो वियो आहे। एस पी एस जा तकरारी नतीजा रोके मामले जी अदालती जांच कराए ख़दशा ख़तम कराया वञनि। पाकिस्तानी बेशत लाइ चङी ख़बर। आई एम एफ पाकिस्तान लाइ कढाई 2 अरब डॉलर किस्त जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नाणे वारे वज़ीर पारां तस्दीक। ज़रियुनि मूजिबि आई एम एफ 1 अरब डॉलर आई एम एफ प्रोग्राम तहत आईमोसमियाती तब्दीली जे असरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ 20 करोड़ डॉलर जारी करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। आई एम एफ जे जाइज़ा मिशन पाकिस्तानी बेशत जो जाइज़ो वठण बाद कर्ज़ जारी करण जी सिफ़ारिश कई हुई। मौजूदा प्रोग्राम तहत पाकिस्तान खे मजमूई तौर ते 3.5 अरब डॉलर मिली चुका आहिनि। हाय नाज़रीन, थाणो बोलान खान वेझो नूरियाबाद में मज़दा ऐं तलत में टकर। हादसे में 1 ॼणो फौत, 1 ज़ख़्मी। रेस्क्यू ज़रियनि मूजिबि फौजी सुञाणप पंजाब वासी गुलाम मोहम्मद वल्द अलाह वसायो तौर थी आहे।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो? हाने वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए हुजे हीरो। है में

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream।
4: छा अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो हिकु नओ ग्लो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो। वाइट एश ब्यूटी, वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: yeah!

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: डेडलाइन ते को भी ध्यान ना है ईरानी पटे वजीर तर्जमान इस्माइल बाकाई चवाए तेहरान अमरीकी तजवीजन ते गौर कर रो है नतीजे ते पौतासी ऐलान कर छींदी ईरानी फौज समूर सलाहतन से मुकम्मल तौर तैयार है सूरत हाल भी नजर रखल अथ।

ईरान हामला हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार करे वरतो। ओपन सेशन में मंजूरी वरती वेंदी। ईरानी पार्लियामेंट जो कौमी सलामती कमीशन सरबराह इब्राहिम अजीजी चयो आहे त हामला हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार कयो वियो आहे। ईरानी पार्लियामेंट जूं सरगर्मियूं शुरू थींदे ई बिल मंजूर कयो वेंदो।

त पहिरें ई महांगाई खे मुंहुं ॾियूं पिया। हुकूमत पेट्रोल वधीक महांगो करे ज़ुल्म कयो आहे। हुकूमत पेट्रोल अघनि में कयल वाध खे फौरी तौर ते वापसि वठे रिलीफ फराहम कयो वञे।

बलीर में बबारड़ा पानी के खर में बुरी फौत। हादसे में एक औरत हयाती विञाए पे थी। सुपर हाईवे भरसा धनी बख्श गोठ में बबारड़ा पानी के खर में बुरी फौत थी। पा फोती बारन जो लाश अस्पताल मुंतकिल सुनप नी सकी। रोड हादसे में फोतल हसीना जाल मोहरम जो मड़ अस्पताल मुंतकिल।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर और मंगल रात 7 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12 PM. This transact is brought to you by
3: कैडेट कॉलेज जैकबाबाद। अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल
4: और दाखिला टेस्ट का इनेकाद 12 अप्रैल 2026 को होगा। राबता 0333-733-1172।
5: जीए लतीफ।
6: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

सा मामला तय न थे तो बीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ वही था। अमरीकी सदर ट्रम्प है तो जंगबंदी बाबत असाज तजवीजन से ईरान जो जवाब अज मिलने जो इम्कान है। प्रोजेक्ट फ्रीडम सुठो ऑपरेशन है करण जहा बया तरीका भी प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होंद जैमें बी श शामिल होंद। पैं कम करूं पा कें डेडलाइन से को भी ध्यान ना है। ईरानी परदेही वजीर तर्जमान इस्माइल बाकाई चवा तेहरान अमरीकी तजवीजन से गौर कर रो है नतीजे से पौतासी तो ऐलान कर छींदी। ईरानी फौज समूरन सलाहतन से मुकम्मल तौर से तैयार है सूरत हाल से भी नजर रखल अथस। ईरान आदना हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार करे वरतो ओपन सेशन में मंजूरी वरती वेंदी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन सरबराह इब्राहिम अजीजी चवा है तो आदना हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार कर रो है। ईरानी पार्लियामेंट जो सरगर्मियों शुरू थन्दे ही बिल मंजूर कर वो। पेट्रो लगन में गाटे टोड़ वाद के अवाम रद्द कर छो। शहर का चवण है तो पेरे ही महंगाई के मुंह लियो पा। हुकूमत पेट्रोल महंगो कर जुल्म किया है। हुकूमत पेट्रोल अगन में कल वाद के फौरी तौर से वापस वे रिलीफ फराहम कर। पनो आकिल वेझो पसन पढ़ने लाय घर निकरंदड़ नौजवान के घर जो चार औरतों मुबैना तौर से अगवा। हथियारबंद गोट थमी खान बसमात आतुल अलाको ठान मौजूद पसंद पढ़ने लाय निकल नारी के वासन पलान में औरतन के अगवा किया है।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

का ईरान सासिकरण बिंदरन से गजी शुरूआती मुआदे से कम कर रहा आयो जै तहत एक महीने ताई गाल जरिए फ्रेम वर्क तय कर वो जो मकसद जंग जो खात्मो है। ईरान से मामला तय न थे तो बीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम पिलर्स तरफ वही था। अमरीकी सदर ट्रंप है जंगबंदी बाबत असि तजवीजन से ईरान जो जवाब अज मिलने के इम्कान है। प्रोजेक्ट फ्रीडम सुठो ऑपरेशन है करण जहा बया तरीका भी प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस हों जैमें बी शय भी शामिल हन्द। पैंजो कम कर रहा आयू कैंजी डेडलाइन से को भी ध्यान ना है। ईरानी परदेही वजीर तर्जमान इस्माइल वाकई है ईरान अमरीकी तजवीजन से गौर कर रहा है नतीजे से पौतासी तो ऐलान कर छींदी। ईरानी फौज समूरन सलाहित मुकम्मल तौर से तैयार है सूरत हाल से भी नजर रखल अथसि।

ईरान अञा बि केतिरा महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो। अमरीकी गुजरात इहे ट्रम्प इंतज़ामिया खे आगाह करे छॾियो। आलमी नशियाती इदारे मौजूदु CIA पंहिंजे नई रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरान वधीक 4 महीननि ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो, जंहिं सबब ई ईरान अमरीका जो दबाव घणे हद ताईं क़बूल न करे रहियो आहे। तेहरान जे ॻाल्हियुनि में सुस्ती जो सबब इहो ई आहे। ईरान आबदा हुरमत लाइ कानूनी बिल तयार करे वरितो, ओपन सेशन में मंज़ूरी बि वरिती वेंदी। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती कमीशन सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त आबदा हुरमत लाइ कानूनी बिल तयार कयो वियो आहे। ईरानी पार्लियामेंट जूं सरगर्मियूं शुरू थींदे ई बिल मंज़ूर कयो वेंदो। पेट्रोल अघनि में घाटे टोड़ वाध खे अवाम रद्द करे छॾियो। शहरनि जो चवण आहे त पहिरें ई महांगाई खे मुंहुं ॾियूं पिया। हुकूमत पेट्रोल वधीक महांगो करे ज़ुल्म कयो आहे। हुकूमत पेट्रोल अघनि में कयल वाध खे फौरी तौर ते वापसि वठे रिलीफ फराहम करे। पिंगरो जे ॻोठ ख़ुदाबख़्श सभाणी में नौजवान कुहाड़ी जा वार करे क़तल, वारसनि जो लाश रखी धरणो, जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। जवाबदारनि 21 सालनि जे भुट्टो सोलंकीअ खे कुहाड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो। वारसनि मूजिब जवाबदार मुनवर इसबाणी नौजवान क़तल कयो आहे, खेसि गिरफ़्तार कयो वञे। वनवाकिल वेझो पसंदि पढ़ण लाइ घरां निकितल नारी जे वारसनि जो नौजवान जे घर ते मुबैना हमिलो। मुबैना तौर ते 4 औरतूं अगवा, नौजवान सदी कुमार जे वारसन मूजिब हथियार बंद मुस्मत दातुल अलाजीवाई कायम ऐं साहिबा बहर खे अगवा करे विया आहिनि। पुलिस कुझ न करे रही आहे। पुलिस चयो आहे त औरतूं अगवा न आहिनि थियूं, अगवा वारा इतलाउ कूड़ा। कोर्ट गुलाम मोहम्मद वेझो ज़मीन मां 4 ॿारनि जी माउ जो तशद थियल लाश, शांतिनगर वासन बीजल कोली जो लाश घर भरिसां ॿनी मां मिलियो। औरत जी माउ मूजिब धीअ खे क़तल कयो वियो आहे, जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। पुलिस मूजिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इंतज़ार आहे। वाकई जी जांच कई पई वञे। जेकम बाद जी बेटी बाज़ार मां सखरवासी शख़्स जो लाश, पुलिस मूजिब लाश सुञाणप खान मोहम्मद तौर थी आहे। तशद जा निशान नज़र नथा अचनि।

0: सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगरन जो एहतजाज जारी। फैजगंज टंडवादम में आबादगरन जो मुजाहरा। फैजगंज के एफियो भाव अली नवाज भाव में पानी की खोट खिलाफ आबादगरन जो मुजाहरो। आबादगरन मूजिब पानी न मिलने सबब जमीनू सुकी पे वन पानी फराहम कर वे। टंडवादम के जाम बेराज मनकुनड़ नेदरा माइनर के आबादगरन जो पानी की खोट खिलाफ एहतजाज। आबादगरन जो तो पानी खोट सबब फसल सुकी तबाह थी वह पानी जो विकड़ो रोके विकड़ो फराहम कर वे। हकवारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थे। सिंध के मुख्तलिफ शहर में रैलियों पाक फौज के भेटा पेश। टंडो मोमिन खान में भारत खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी के साल मुकम्मल थे। पुलिस पारा रैली कढ़ी वही। पुलिस हेडक्वार्टर में कौमी झंडे के सलामी पेश करने बाद प्रेस क्लब में रैली कढ़ी वही। पनो आखिल में भी पाक फौज हिमायत में टाउन कमेटी का प्रेस क्लब में रैली कढ़ी वही। पाक फौज के भेटा पिण पेश कई वही। कानपुर वेझो पैसन की जजीलती गोठानों मुबैना तौर से अगवा। फैजुल लाड़े वटा हथियार बंद। जमीन से ढोर चाहींद नौजवान अब्दुल शकूर ओढ़ानो के अगवा कर वासन चवण हथियार बंद पंज बेहू ए ट्रैक्टर भी काहे वह। पुलिस मूजिब नौजवान पैसन की जजीलती अगवा थो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

Skin Beauty Show. बिल्कुल सुना प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. आप लोगों का अपना प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. ये प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए है, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और आप लोगों के चेहरे पर हसीन साल निखार लाने के लिए है. ओके जनाब, से तैयार हो जाएंगे, रेडी शेडी हो जाएंगे और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रही. ऐसा होता है ना, आप हमारे साथ मौजूद है और सुन रहे हैं तो ये चीजें आप लोगों के लिए होती हैं कि भाई अगर आप व्हाइट एज इस्तेमाल के बाद आप लोगों को रिजल्ट्स कैसे मिलने वाले हैं और क्या चीजें ऐसी हैं, क्या डिफरेंस है जो कि आप लोगों के समझने की बातें होती हैं. तो बिल्कुल जी सब कुछ समझाएंगे और आराम से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, तहम्मुल से समझाएंगे. और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत हो समाज तो और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं. सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान. नाम तो सुना ही होगा. तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है. यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सर आपने हाल चाल बताते जाइए. सो डियर लिसनर्स अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत हो, उम्मीद हम सतीदम के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे. तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है. फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली. आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं. तो यकीन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे, आपके चेहरे पर खूबसूरतियां लाएंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक. ओके जी, तो फन करने के लिए, बातें करने के लिए, खूबसूरती के राज जाने के लिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए. ओके जी, तरीके कार क्या होंगे वो आप लोगों को बताएंगे. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे. ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालें, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान. सुबह अपने काम पे कीजिए, हमें भी सुनिए. आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए. ओके जी, तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल आते हैं. यहाँ पर ऐसा करते हैं आगाज प्रोग्राम कर लेते हैं. सबसे पहले आगाज प्रोग्राम करते हैं जी प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो में और यहाँ पर वापस आकर आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या है और साथ साथ ये जो प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तो इनके क्या फायदे हैं जो कि आप लोगों को मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे. तो बिल्कुल जी ये एंजॉय करते जाइए और हमारा साथ देते रहिए पूरी पूरी 3 बजे तक. आपका हमारा साथ प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए.

सुन रहे हैं वी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं शामिल वो बताएंगे लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में क्या है जरा उसकी जानकारी भी आते क्योंकि प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट्स होंगे और प्रोग्राम के अंदर

बाद कि क्या वो अगला इंसान हमें सही जो है ना वो एडवाइस देगा या नहीं देगा। तो आज मैं आप लोगों से सवाल बिल्कुल ये पूछूंगी। आज ऐसा करते हैं कि आप लोग जो ना मुझे अपनी स्किन की जो है ना वो प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आप लोगों की स्किन के साथ क्या प्रॉब्लम है वो आज आप मुझे बताएंगे, और उसके साथ साथ मुनासिब सा जो है ना मैं आप लोगों को उसका हल बताऊंगी। और उसके अलावा हमारे पास जो इतने सारे प्रोडक्ट्स मौजूद

ठीक हो गया जी। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ये होता है कि भाई हम बहुत ज्यादा लोगों को बता पाते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप लोगों को कैसा फायदा मिलने वाला है। तो बिल्कुल अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तो आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसी के साथ साथ हम जरा आप लोगों को ये भी बताते चले कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट नाम तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, व्हाइट एश का जो है ना आप लोगों के पास विटामिन सी का, उसके अलावा व्हाइट सो भी मौजूद है और उसके साथ साथ व्हाइट एश की लवली अल्ट्रा मौजूद है जो कि भाई आप लोगों के स्किन के लिए परफेक्ट वाला निखार साबित होने वाली है। उसके अलावा व्हाइट एश के हेयर रिमूवल लोशन भी है, उसके अलावा काफी ज्यादा है। लेकिन अगर गर्मियों के प्रोडक्ट की बात की जाए तो इस लोशन को छोड़कर बाकी आप सारे प्रोडक्ट आसानी गर्मियों में भी लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ डी प्रोडक्ट्स की बात

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो
2: दंदा रहो।

आते हैं, तो उसके साथ आप डी स्किन का जो है ना वो फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए। रात के टाइम सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए, उसके बाद जो है ना आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। दो रातों के इस्तेमाल के बाद आपको मिलता है खूबसूरत सा निखार, आपकी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती जाएगी और आप लोगों को जो है ना वो पता चलेगा कि आप वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अंधा असरा से, पाप के चेहरे पर झुरियां हो, दाग धब्बे हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है एलोवेरा और एवोकाडो से तैयार शुदा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुरियां आ चुकी हैं या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, आपकी स्किन डल सी हो चुकी है, तो व्हाइट एज लगाएं और व्हाइट व्हाइट हो जाए। उसके साथ साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ आपको जो

0: फैसल ही का सुनाइएगा। ठीक है जी, ठीक है। वैसे कौन सी क्रीम आप खरीदेंगे ये जरूर मुझे बताया करें, ठीक है। और ये मोरो से हमारे साथ फिरदोस मौजूद, कहती है सलाम एस एम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, लेकिन आपकी आवाज थकती नहीं क्या? शो खत्म होने के बाद भी अगले शो आने तक मेरे दिमाग में घूमती रहती है, अब तो एडिक्शन लग गई है। बाजी आप मुझे ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा, और ये गाना स्पेशली आपको दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, तव्हां बि ॾिसंदा जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा वाइट एज जी लवली क्रीम।
1: इश्क मुश्क होता है ऐसा, आग और पानी जैसा, इश्क मुश्क होता है ऐसा।
0: तो बिल्कुल वाइट एज जी लवली क्रीम हुजे, या वरी वाइट एज जो साबुण हुजे, या वरी फेस वॉश हुजे, तव्हां इहे चीज़ूं जेके आहिनि, इहे अहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि जेके तव्हां लॻाए सघो था बाबा दिलि खोले करे, छो त ही हर स्किन टाइप जे लाइ हूंदियूं आहिनि। ऐं साबुण त हर कोई इस्तेमालु कंदो आहे, फेस वॉश बि हर कोई इस्तेमालु कंदो आहे। अॼुकल्ह जेको आहे न, तव्हांखे हिकड़ी फेयरनेस क्रीम जी बि ज़रूरत हूंदी आहे, छो त गर्मियुनि जो मौसम अची वियो, त फेयरनेस क्रीम जे तौर ते तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम खे इस्तेमालु करे सघो था। तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी, ऐं तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बि बणाईंदी। सही आहे, समझी विया न? ओके जी, चाचा खालिद भी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ चाचा, आप बताएं कैसे हो? जी बिल्कुल, आप हमारा शो सुन रहे हैं और कहते हैं अच्छा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? अच्छा हमारे साथ मौजूद है, हाय आप और चाचा वेलकम करते हैं। वफा अब्दुल गफ्फार खास के लिए है फ्रॉम न्यू जतोई, आपका आवाज बहुत प्यारा है, मैं आपका शो डेली सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आपका, वेलकम। इरम आपका भी। आकाश ओड हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम मेपुर खास, कहते हैं शुगर मील, योर शो इज नाइस बाजी, मेरी स्किन ऑयली ऑयली रहती है, क्यों इसका हल तो बताएं जरा, और प्लीज प्ले आतिफ असलम सॉन्ग। ऑयली स्किन का तो बस एक ही हल है कि आप जो है ना, अगर इस वाइट एज की डॉक्टर अगर आप अपने करियर चेंज करेंगे ना, तो ये एक ऐसा ट्यूब है जिसके इस्तेमाल के बाद अगर आपकी स्किन ऑयली भी है ना, तो आपके चेहरे पर ऑयली होती है ना, उनके साथ ये बड़ा मसला होता है कि उनके चेहरे पर एक्नीज काफी ज्यादा आते हैं। तो अगर आपकी स्किन भी वाकई ऑयली है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर ऑयल कंट्रोल हो, तो आप डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब इस्तेमाल करके अपने चेहरे के ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई सबसे पहले जो चीज खत्म करने वाली होती है स्किन से, वो ऑयल होता है, तो ऑयल को खत्म करना चाहते हैं गर्मियों में, तो वैसे ये बहुत ज्यादा मसला बढ़ जाता है। तो ऑयल को खत्म करने के लिए आप डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है, आयुर्वेदिक है, तो आप इजीली लगा सकते हैं। यानी कि ये नहीं कि इसके अंदर पता नहीं क्या ऐड किया गया होगा, पता नहीं किस तरह के प्रोडक्ट से ये तैयारशुदा होगा, तो आप इजीली लगा सकते हैं। इसके अंदर सारी चीजें ऐसी डाली गई है कि आपकी स्किन को फायदा ही पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ लुबना हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मेरे साथ मौजूद है अर्जी भुट्टो से, हमारा शो सुन रही है, क्या बात है लुबी, आपको वेलकम करते हैं।
1: जहाँ पर दिल वाला ही बस ठहरे वहाँ पर।

ओके जी, फहाद दे रही है, सऊद दे रही है, नवाबशाह से हमारे शो सुन रहे हैं, अदी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा ये मौजूद हैं, क्या हाल है आपके जी? मैं ठीक हूँ, वालेकुम असलम। सिकंदर अली जरवार है, अरसलान अली अच्छा जावरी है, ठीक है, खान अली जावरी है, नेमतुल्ला जावरी, समीर अहमद जावरी, तनवीर अहमद जावरी, जमील अहमद जावरी, गोठ रोशन अली जावरी, अली आबासी हमारे साथ मौजूद है और आपको वेलकम करते हैं। ये मौजूद है, सलाम जी, स्किन माशाल्लाह सही है, फर्स्ट क्लास है, सागर नियाज जानियो भाई हमारे साथ मौजूद है। चलें जी, फर्स्ट क्लास ही रहनी चाहिए क्योंकि स्किन अच्छी होती ना तो जिंदगी वाकई बड़ी अच्छी लग रही होती है, तो स्किन को फर्स्ट क्लास रखिए और इस्तेमाल करते जाइए व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स। ओके जी, खूबसूरतियां हासिल करते जाइए, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहते जाइए। टाइम हो जाता है जरा, हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ड्यूरी शो।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन डॉट एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: This program is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: परचेज करते जाइए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपके करीबी जनरल स्टोर पर मिलना जरूरी है। ओके जी, तो जल्दी जल्दी से आप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए 03-15-799-0595। ओके जी, सो आज आप मुझे बता रहे हैं आपकी स्किन पर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप जो है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सा परेशान हो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी स्किन के साथ क्या ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम कॉलिंग वाला सेगमेंट ऑन कर देते हैं और कॉलिंग की जाने पाते हैं। और कॉलिंग वाला सिस्टम जो है ना वो भाई मुझे कई मरतबा जो है ना ये मैं कह देती हूँ कि भाई अगर आप कल कॉल कर चुके हैं तो आज आप कोशिश कीजिएगा कि आज के प्रोग्राम में आप कॉल ट्राई ना करें, ठीक है। ऐसे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ना वो प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते हैं। तो जिन लोगों ने कल कॉल की थी वो आज थोड़ा सा कोशिश करें कि वो आज जरा रहने दें। और इसके साथ साथ जो है ना हम यहाँ पर कॉल लेते हैं, फर्स्ट कॉल जो हमारे प्रोग्राम की होने वाली है। और कॉलिंग नंबर आप लोगों को बताते चले, कॉलिंग नंबर होने वाला है 03-22-13-22-88। ये कॉलिंग नंबर आप डायल करेंगे और हमारे प्रोग्राम में कॉल के जरिए शामिल प्रोग्राम हो जाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी स्किन का कौन सा ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है। ओके जी, सो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल देखते हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जमालदीन भा, खुश आयो, ठीक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, मजे में। प्रोग्राम बुधो पे जमालदीन भा?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा मुख्य बुधायो तो प्रोग्राम जो नालो वगैरह अचे तो याद क्यों आए? ओके ओके, मुखे ॿुधायो त प्रोडक्ट इस्तेमाल करण जे बारे में छा सोचो आहे? इस्तेमाल कंदा?
1: बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल कंदा इंशाल्लाह, सुभाणे करीब करीदासीं।
0: चलो जबरदस्त, मुखे ॿुधायो तव्हांजी स्किन जो कहिड़ो मसला जेको तव्हांखे परेशान कंदो आहे? चलो चलो चलो, इहो जेको आहे न तव्हां वाइटेश ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा त तव्हांजा वैसे ई लही वेंदा, निंड पूरी कंदा कयो।
1: जी जी बिल्कुल।
0: चलो जी जी, ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो।

0: થાય તો ટોપિક ની તમાચા ચૌદા. અલાય છું અવાજ થોડો અહીંયા મતલબ સહી નથી વચ્ચે કોલર્સ જો क्रीम खां थोड़ो पो तमा अवॉइड कयो अगर तमा जी स्किन सेंसिटिव आ न त तमा उए प्रोडक्ट लगायो जे के तमा जी स्किन ते जको न त सूट नथा कंदो उनन के थोड़ो अवॉइड कयो आई तमा जी को न व्हाइट इज जे का डॉक्टर पिंपल ट्यूब आ या तमा जरूर ट्राई करी लिसियो. बिल्कुल तमा या डॉक्टर पिंपल नाले सा वठंदा न त तांगे मिली वेंदी इजीली मीरपुर खास
1: लवली
0: क्रीम जबरदस्त या भी तमा जी स्किन ते सूट कंदी.
1: या
0: ओके जबरदस्त बियो छा चवंदी अलीजा निदा भी चए पई तमा भी गालाइंदम सो किथे गालाइंदी न या कुछ ज्यादा शर्मीली आ लगे तो भला बैकग्राउंड बुदो अदी निदा
1: हेलो
0: हेलो चाला निदा खैर खैर बुधायो तमा अलै छापे छो तमा कॉल थिंदम तमा बुधाइंदम. ऑयली स्किन आहे मतलब तव्हांजो बि इहो मसलो आहे. चलो सही आहे तव्हां वाइरे जी लवली क्रीम हणजो ऐं जेको डॉक्टर पिंपल ट्यूब आहे न उहो ट्राए करे ॾिसजो. चलो ॿियो छा चवंदी निदा चलो कंफ्यूज थी वई रिलैक्स चलो ठीक है थैंक यू सो मच निदा तुम्हें गालायो कॉल ते वैसे निदा आई अलीसा में यो थोड़ो फर्क आहे तो अलीसा जका थोड़ी कॉन्फिडेंट आ आई निदा जका ना थोड़ी शर्मीली आहे गाल सुठी गाला उन का अलावा तुम्हें भी कॉल करे सको था कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88 प्रोग्राम में तुम्हें जो कॉल्स बिल्कुल वठनासी तुम्हें से कॉल ते गालियों कनासी कचेरियों कनासी तुम्हें का पुछनासी तुम्हें जी स्किन जा प्रॉब्लम उन का अलावा भी एकड़ी गाल टाइम टू आई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था उनका पोए जल्दी वापसी तमारे मोटी नासी तमा करी न वंजो इते बिठा होजो मां ओ ही मनी ओ ही मोटान सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एनडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश प्रोडक्ट्स एनडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. सुनती रहिए और हमारा साथ दीजिए.

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

스킨 뷰티 쇼. ओके जनाब आप सो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स तो हमें बताइए कि आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है उन तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाएगा और साथ ही साथ आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आप लोगों के लिए खूबसूरती की बातें होती हैं जनाब। अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर ये जो मसले हैं ना जिनकी वजह से आप परेशान हो चुके हैं तो वो खत्म हो जाए, तो बिल्कुल जी खत्म हो जाएंगे जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात आप लोगों को बताती चलूंगी, जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से जो है ना आप लोगों को ये बताती चलूंगी, जब आप कोई भी अच्छी वाली ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज

उसके अलावा व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एश का ब्यूटी सो भी मिल रहा है और साथ में आप लोगों को अच्छा अगर ये चीज आप लोग समझते हैं ना कि अगर हम सोप इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के लिए व्हाइट एश वालों का सोप मौजूद है और बाकी जो लोग चाहते हैं कि हम तो फेस वॉश लगाते हैं भाईजान तो आपके लिए फेस वॉश भी मौजूद है क्योंकि व्हाइट एश का विटामिन सी का फेस वॉश भी अवेलेबल है जो कि आप लोगों की स्किन को मॉइस्चराइज करता है आप लोगों की स्किन पर जो है ना वो निखार लाता है खूबसूरती लाता है आप लोगों को खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है तो ऑल स्किन टाइप लोगों के लिए यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और परफेक्ट वाला प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ लेकिन जब भी आप लोगों को हर लिंक में ना बताऊं तो मुझे मजा नहीं आता और वो है जनाब व्हाइट एश की लवली क्रीम। और व्हाइट एश की लवली क्रीम उन लोगों को बताएं जिन लोगों ने हमें अभी अभी सुनाया स्टार्ट किया है। तो व्हाइट एश की जो लवली क्रीम है ना जनाब ये रेडियंट अल्ट्रा विटामिन से तैयार शुदा है। इसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल मौजूद है और साथ साथ इसके अंदर सनस्क्रीन भी मौजूद है यानी कि आप लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आपकी स्किन को खूबसूरत भी बनाएगी। तो व्हाइट एश की लवली क्रीम आप लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट अब ये इतनी जबरदस्त क्वालिटी से तैयार शुदा है कि जब आप व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाने के बारे में सोचते हैं ना तो आपने ये भी नहीं सोचना कि हमारी एज कितनी है क्योंकि अक्सर हम बहुत से जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो एज के मामले में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी एज इतनी है तो क्या हम लगाएं या ना लगाएं। तो व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना अगर आप कॉलेज गर्ल हैं स्टूडेंट्स हैं काम करते हैं जॉब करते हैं किसी भी एज में

0: pertama.
1: ओयो तानो क्रीम मसाला के तो है दोस्त इस्तेमाल करने पे कुछ दोस्तन के याद करा दो।
0: जी जी करी बैठो।
1: असल प्यारो दोस्त है रुस्तम खास के लिए, शमन खास के लिए, अमीरो बीने विक्यो खास के लिए, शबीर खास के लिए, आई खाले बिलाशारी जी तरह का गुलाम रही बनो जिसके दोस्त बुद्धन में सतन में सलाम मोहब्बत हूँ।
0: ओके थैंक यू प्रोग्राम में कॉल गई। दोस्तन जलाए भावट केडी मोहब्बत हुई दिसो था। ओके सो बस प्रोग्राम जी लास्ट कॉल होंगे ठीक है मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बाजी केड़ा दो आदम कुछ आयो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अदो असल सगत मौजूद है
2: मोहम्मद अजीम राजड़ी फैन
0: है। ओके अजीम भाई छाला कुछ आयो
2: जी बाजी प्रोग्राम बुधन ता
0: नालो जी तो प्रोग्राम जो
2: प्रोग्राम बाजी जको बुधना हो ता जे जको भी खणी ना करे
0: के बुधाए ता पाजे करीबी जनरल स्टोर ता मालूमात जरा वठिए जो ता वाइटेज दा प्रोडक्ट्स ते मिलन न था
2: बाजी सुबारे ता कंफर्म करे बुधाई नो मा
0: जबरदस्त बियर नेक्स्ट टाइम ता माची कॉल आगे ते ता मके जरूर बुधाए जो
2: जी जी बाजी कॉल भी वडी दुखी लगन या
0: बाजी या गाल बिल्कुल
2: मेओ
0: छा चवंदा प्यारा भा
2: बस बाजी सजी टीम जे सलाम ता के स्पेशल सलाम बाजी।
0: ओके थैंक यू सो मच अजीम भाई तुम कॉल कई इलाही सुठो लगो माशाल्लाह तुम सा गाल आए नहीं उन का अलावा जेको आसो बस ही लास्ट कॉल हुई सनी प्रोग्राम जी ठीक है तादे जो नालो याद ना है पर झंडो मरी याद आ सके झंडो मरी का कॉल कंदो आ बेचारो काफी टाइम खा माशाल्लाह शादी थी वे सदी जी। ओके सो गानो लगायो आई प्रोग्राम में जिको आसा वट थोड़ो वनी टाइम बचो आ असो पैनल ते कुछ मैसेजेस ना रसूलाबाद का आवे तो सिंह संबानी भाई हमारे साथ मौजूद दिवाली को मसलाम अदी उफ गर्मी दाढ़ी आहे बिल्कुल गर्मी दाढ़ी आहे भा आई छाता चो यो कमकार भी कयो था बिल्कुल जी कमकार भी लाजमी आहे असा भी कमकार कयो था ता भी कयो
3: दिन में हसती हो तो क्या रात में रोती होगी
0: आई हाय। अच्छा ये दड़ावा से डॉक्टर राम फकीर हमारे साथ है मैं ठीक हूँ बताएं आप कैसे हैं। ये हमारे साथ है जेबुल निसा मोरो से मैं सुन रही हैं बहुत शुक्रिया स्वीटी और गोठ नबीदाद बमरो नारो खाम गरम सर्द हवाओं में गरम वरी सर्द हवाओं में असो प्रोग्राम बुधन पाया इमाम डिनो बमरो भाई तुम मोहबतू आए और ये हमारे साथ है सागर न्यास जानियो भाई आपका बहुत शुक्रिया चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया चाचा खालिद
3: याद तो आती होगी दिल दुखाती होगी मेरी तस्वीर।
0: ओके ये हमारे साथ मौजूद हैं जी
3: होगी
0: सदाकत हुसैन मियानी साहब बचल शाह मियानी सखर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सिटी शहदादपुर से मीर अल्लाह डिनो खान टालपुरी आपका शो वेरी नाइस से बहुत शुक्रिया जी जमीला हमें सुन रही हैं थैंक यू वेरी मच। मायरा हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया मायरा
3: एक दीवाने को खून से मैंने लिखा।
0: अच्छा वो कॉल हाँ वाकई खुद ही कट हो गई और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा प्रेमचंद भाई हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम मोहब्बतू तो आंजू प्रोग्राम में दो पया और सागर अली रजा हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया सनाला बिरोई हमारे साथ है थैंक यू जी थैंक यू। अच्छा हिदायतुल्लाह अहमदानी आपका भी बहुत शुक्रिया मैं जल्दी से आप लोगों के कुछ ना नाम ले लेती हूँ और ये फराज अली बिरोई हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया
3: याद तो आती होगी।
0: अच्छा गुलाम हैदर फुलपोटो हमारे साथ मौजूद है खैरापुर मीरज से वेलकम
3: याद तो
0: और सिबगतुल्ला रांझा हमारे साथ मौजूद है भाई आपको वेलकम करते हैं और ये हैं सी वफा मीर मुनव्वर अली अनवर भाई भी आ चुके हैं थैंक यू सो मच मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है वेलकम महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है आपको शो पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया जी और अमानुल्लाह शेख हमारे साथ मौजूद है वेलकम किशोर भाई भाभी को बोलें कि जरा खुद ही परचेज कर ले जार खाली हो जाएगा तो फिर यूज कर लीजिएगा दर्द दिल आप बहुत प्यारी हैं।
3: एक दीवाने को
0: अच्छा फजीला सिंधी भी हमारे साथ मौजूद है फजीला सिंधी आपको दिल से वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और आपने कायनात को और सभी सुनने वाली लड़कियों को सलाम दिए हैं सो वालेकुम अस्सलाम।

ओके जबार वैसर आपका भी बहुत शुक्रिया। सा ख्याल रखियेगा, यहीं पर आप लोगों से हमें इजाजत लेते ही वरी सलाह तमाम मुलाकात प्रोग्राम में थे वाली आई तो पांजो ओ हेलो सर ख्याल रखना किसी का गलती थी तमाम माजरत कहीं पर जिना फीडबैक रह चुका है जिना गाना रह चुका है सभी का माजरत कहूँ था सो मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाबा यू ऑल एंड टेक केयर।

पंहिंजो कम करे रहिया आहियूं, कंहिं जी रेड लाइन ते को बि ध्यानु न आहे। ईरानी पटेई वज़ीर तर्जमान इस्माइल बाकाई चयो आहे त तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते गौर करे रहियो आहे। नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं। ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयार आहे, सूरतहाल ते बि नज़र अथसि।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: रोल कैमरा एक्शन।
4: जनक अली खान आप सबको खुशाम देख कहती है। जनक जहां में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुटकर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।

0: बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
2: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो, सदर शी जिनपिंग ए वजीर आजम ली चांग से मुलाकातू कंदो। ज़रियन मूजिब वजीर आजम शहबाज शरीफ 23 खां 25 मई ताईं टिन ॾींहनि जे दौरे ते चीन वेंदो। पाक चीन लागापन खे 75 साल मुकमल थियण ते थींदड़ तक़रीबन में शिरकत बि कंदो। वजीर आजम जे दौरे दौरान पाकिस्तान चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते बि सहियूं कयूं वेंदियूं। सी पेक ऐं वापारी लागापनि खे वधीक हथी ॾियण ते बि ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। अमरीका ऐं ईरान में ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में ॿीहर ॻाल्हियूं शुरू थियण जो इम्कान। मामला तय न थियण ते सदर ट्रम्प जे वरी ईरान खे ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करण जी धमकी। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल रिपोर्ट में चयो आहे त अमरीका ईरान सालसी कम कंदड़नि सां गॾिजी शुरूआती मुआहिदे ते कम करे रहिया आहिनि, जंहिं तहत हिक महीने ताईं ॻाल्हियुनि लाइ फ्रेम वर्क तय कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प बि अॼु ईरान तर्फ़ां अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब मिलण लाइ पुरउमीद। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां मामला तय न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ़ वञी सघूं था। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में बि ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं। पंहिंजो कम करियूं पिया, कंहिं रेडलाइन ते को बि ध्यानु नाहे। ईरानी परदेह वज़ीर जे वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते गौर करे रहियो आहे। नतीजे ते पहुतासीं त ईरान करे छॾींदासीं। ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयार आहे, सूरत हाल ते बि नज़र आहे। ईरान अञा बि केतिरा ई महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो। अमरीकी गुझे इदारे CIA ट्रम्प इंतज़ामिया खे आगाह करे छॾियो। आलमी नशरियाती इदारे मूजिब CIA पंहिंजी नई रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त तेहरान वधीक चइनि महीननि ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो, जंहिं सबबि ईरान अमरीका जो दबाउ घणे हद ताईं क़बूल न करे रहियो आहे। तेहरान जे ॻाल्हियुनि में सुस्ती जो सबबि बि इहो ई आहे। भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी पाकिस्तान खे दुनिया में नई सुञाणप ॾिनी आहे। अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करण जो बि वॾो सबब भारत ख़िलाफ़ जंग में आहे। लाहौर में तक़रीब ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त दुश्मन खे हक़ वारी जंग में शिकस्त ॾिनी आहे, हाणे तरक़ी वारी जंग में कामयाबी माणी आहे। तरक़ी वारी जंग न खटे त हक़ वारी जंग में मिलियल कामयाबी बि घणी देर ताईं बरक़रार रखी न सघंदासीं। इस्तक़ाम लाइ मज़बूत मैशियत ज़रूरी आहे।

0: पक वारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध जेलन में भी तकरीबू थियो आहिन। सेंट्रल जेल सखर में अकबर जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते तकरीब जेल अमले ऐं कैदियुनि जी शिरकत। खैरपुर जे डिस्ट्रिक्ट जेल में भारत खे शिकस्त ॾियण ते पाक फौज खे भेटा पेश करण लाइ तकरीब थी। हैदराबाद सेंट्रल जेल में बि हक वारी जंग में कामयाबी जी तकरीब थी। इंतिज़ामिया ऐं कैदियुनि जी शिरकत। मलीर जेल में बि हक वारी जंग में कामयाबी खे साल मुकमल थियण जी ख़ुशीअ में तकरीब थी। पाक फौज खे भेटा पेश कई पई।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: फाइनली टेक इट प्लीज, यू हैव टू डू दिस परफेक्टली दिस टाइम। चलें भाई सब अरेंज हो जाए जैसे।

देखिए मन्नत मुराद पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अगर फिरदौस बरूए जमी अस हमी अस तो हमी अस तो हमी अस ए कश्मीर जन्नत नजीर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए गुंजल 2 जुलाई से इतवार शब 8 बजे सिर्फ और लाइफ पर।

0: थी आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network सिंध की आवाज
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें
6: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है
7: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पंहिंजो कम करे रहिया आहियूं, कंहिं जी डेडलाइन ते को बि ध्यान नाहे। ईरानी पढ़ाई वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते गौर करे रहियो आहे, नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं। ईरानी फ़ौज समूरियुनि सलाहियतनि सां मुकमल तौर ते तयार आहे, सूरत हाल ते बि नज़र रखियल अथसि। ईरान अञा बि केतिरा ई महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो। अमरीकी गुझे इदारे CIA ट्रंप इंतज़ामिया खे आगाह करे छॾियो। आलमी नशियाती इदारे मूजिब CIA पंहिंजी नई रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त तेहरान वधीक 4 महीननि ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो, जंहिं सबबि ईरान अमरीका जो दबाव घणी हद ताईं क़बूल न करे रहियो आहे। तेहरान जी ॻाल्हियुनि में सुस्ती जो सबब बि इहो ई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चियांग सां मुलाक़ात कंदो। ज़रियनि मुजिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 खां 25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे दौरे ते चीन वेंदो। पाक चीन लाॻापन खे 75 साल मुकमल थियण ते थींदड़ तक़रीबन में शिरकत बि कंदो। वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाकिस्तान ऐं चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते बि सहियूं कयूं वेंदियूं। सी पैक ऐं वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ते बि ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। IMF सरकारी इदारनि जी निजकारी ऐं सुधारनि वारो अमल तेज़ करण जो मुतालबो करे छॾियो। बिजली, गैस ऐं पेट्रोल जूं क़ीमतूं लाॻत तहत रखण जो मुतालबो IMF जो विच ओभर में जंग बावजूद पाकिस्तान पारां माशी हदफ़ हासिल करण जो बि एतराफ़। हलंदड़ साल पाकिस्तान जी तरक़ीअ जी शरह 3.6% ताईं रहण जो IMF जे एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान जे माशी प्रोग्राम लाइ 6 जाइज़े जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। IMF पारां जारी पधराई मूजिब पाकिस्तान में बेरोज़गारी जी शरह 6.9% ऐं महांगाई जी शरह 7.2% रही सघे थी। टैक्स नेट खे वधाइण वारियुनि कोशिशुनि में बि तेज़ी आणण ज़रूरी आहे। भारत खिलाफ़ जंग में कामयाबी पाकिस्तान खे दुनिया में नई सुञाणप ॾिनी आहे। अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करण जो बि वॾो सबब भारत खिलाफ़ जंग में कामयाबी आहे। लाहौर में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल चयो आहे त दुश्मन खे हक़ वारी जंग में शिकस्त ॾिनी, हाणे तरक़ी वारी जंग में कामयाबी माणी आहे। तरक़ी वारी जंग न खटी त हक़ वारी जंग में मिलियल कामयाबी बि घणी देर बरक़रार रखी न सघंदासीं। इस्तेक़ाम लाइ मज़बूत मईशत ज़रूरी आहे।
0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो
3: करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक ऑफ हबीब रिश्ता भरोसे का।
5: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में। मेदे जा मसाला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ऐं बादी बवासी जनाना बीमार समेत बियन मर्जन जो इलाज करे रहियो आहे। रोजाना सुबुह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर। राब्ते जे लाइ 03112082600 0333-7143-311।
6: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
7: अए अबाड़े जोड़न जे सूरत सफा मारे छजो आ।
8: अदात ने जो इलाज छो नथो कराई।
7: इलाज कराए कराए थक जी पियो आ।
8: अदा इन सूरत जो इलाज खात्माए दर्द दवा सा मुमकिन आहे। जी हाँ खात्माए दर्द एक एड़ी दवा जेका सूर खां दे निजात। सूर चाहे जोड़न जो हुजे पठन जो हुजे जेल जो हुजे या घिंटिया जो कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे कें भी नंढे वडे सूर जे लाए आजमूदा दवा आहे। 7 ॾींहनि जी दवा सिर्फ 450 रुपयनि में। खात्माए दर्द मिलण जो हंधु बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोहड़ी। राब्ते जे लाइ 0305-580-0616।
9: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का।
10: गर्मी थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कयो पिया? हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत। कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवां के दे ताजगी सुकून ऐं हकीकी राहत। दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण, गर्मी जे असर के घटाइण ऐं जिस्म के तवानाई देण लाइ शरबत रूहे राहत। रोजानो सिर्फ 1 गिलास ऐं महसूस करियो थकावट खां आज़ादी। कीमत सिर्फ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखानो रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार खरीबाबाद सखर। खमीस ऐं जुमो मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखाना मसान रोड नज़्द लाला शहजादा चौक रोहड़ी। राब्तो 0302-3626-176। खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
11: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
10: DHMS सिंध
11: RHMP इस्लामाबाद
10: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
11: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
10: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
11: कमर दर्द
10: अर्कुन निसा
11: जोड़ों का दर्द
10: हेपेटाइटिस
11: वजन की कमी या ज्यादती
10: बे औलादी
11: गंजपन का मुकम्मल इलाज
10: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
11: टाइम
10: हफ्ते से जुमेरात
11: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
10: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
11: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
10: राब्ते के लिए
11: 03226-22-00-440। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूम के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-450192। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: सचल की सरमस्त धरती,
12: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM 88 नेटवर्क,
12: सिंध की आवाज़।

0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम लीगल कॉर्नर में आवाया अहां सा गड बाबर शेख आई मुसा गड स्टूडियोज में मौजूद आइन एडवोकेट शहबाज हफीज साहब। आई अज जो असा जो टॉपिक आहे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी अमानत में खयानत। आई अज जे असा जे टॉपिक सा रेलेवेंट अहां जा जेके भी सवाल हुंदा उहे असा प्रोग्राम में शामिल कंदासी। थोड़ो ओवरव्यू नीदो हला टॉपिक के थोड़ो ईज़ी वे में अवां के मां समझाइंदो हला त इन के असा ई खणी चई सघूं था त अमानत में खयानत या कंहिंसां दगा करणु कहिड़े बि पॉइंट ऑफ व्यू सां। फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां ॾिठो हूंदो त बैंक्स वग़ैरह में अवां अक्सर अहिड़ा मसला ॿुधिया हूंदा जंहिंमें कैश वग़ैरह ॾिनी वेंदी आहे, पोइ उहा अगरि हुन अकाउंट में ट्रांसफर या डिपोज़िट न पई थिए ऐं हू जेको बैंकर आहे हुनखे मिसयूज़ करे पियो त हिनखे असां ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चई सघूं पिया। कंहिंखे असीं अमानत ॾियूं पिया का बि शइ ऐं उन में हू ख़यानत करे पियो त उहो बि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे। इन खां अलावा काफ़ी सारा अहिड़ा जेके आहिनि त मसला आहिनि जेके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अचनि पिया। को एजेंट या क्लाइंट अवां ॾिठो हूंदो त उन वटि असांखां प्रॉपर्टी जा डॉक्यूमेंट्स अमानत तौर रखाराईंदा आहियूं पर उहो बग़ैर की असांजी इजाज़त जी उहा सेल करे छॾींदो आहे त इहो बि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे। ऐं पाकिस्तान पेनल कोड जे सेक्शन 404 खां 409 में ही ऑफेंसिस जेके आहिनि इहे इन्हनि जी पनिशमेंट्स बि ॿुधाई वई आहे ऐं इन जा लीगल कॉन्सिक्वेंसिस बि थी सघनि था। इन सां वाबस्त असां सां गॾु स्टूडियोज में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि। 10 ईयर्स खां वठी तकरीबन ही जेको आहे त एडवोकेसी सां वाबस्त आहिनि एज़ वेल एज़ लेक्चरार बि आहिनि लॉ कॉलेज में ऐं तमामु सुठी इन्हनि वटि नॉलेज आहे अबाउट द लॉ ऐं तमामु घणा हिन जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि जेके आहिनि रिटर्न क्वालिफाई थियल आहिनि। सो सभ खां पहिरियां एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब खे अस्सलामु अलैकुम चवंदासीं। शहबाज़ साहब, वेलकम टू द स्टूडियो।
1: थैंक यू वेरी मच आफ्टर लॉन्ग टाइम।
0: यस, लॉन्ग टाइम। ऐं असांजा व्यूअर्स तव्हांखे तमामु घणो मिस पिया कनि।
1: वॾी महिरबानी, बट क्रेडिट तव्हांखे वेंदो इहो जेको प्रोग्राम जो आहे ऐं अलहमदिल्ला हिन में जेको आहे इनोवेटिव शयूं बि तव्हां कयो था। मुख़्तलिफ़ ॿिया जेके बि पैनल एडवोकेट्स आहिनि उन्हनि खे बि इन्विटेशन ॾियो था पिया। ख़ुशी आहे त पूरो इन्वायरमेंट बि तव्हां चेंज करे छॾियो आहे। थ्रू जेको आहे न पहिरियों असां पंहिंजो लिसनर्स लाइ वेंदासीं, हाणे त तव्हां आईडियो वारो सीन ऐं वीडियो वारो सीन बि जेको आहे न
0: हिते
1: क्रिएट करे छॾियो आहे। जीअं नॉलेज आहे त हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते अवेलेबल न हुजे, जेकी बि सोशल मीडिया जा प्लेटफॉर्म्स आहिनि उते ऑलरेडी हर शइ जी अवेलेबल हुजे। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर क्रिएटिंग सच अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर द पीपल to get the benefit from that program.
0: Thank you sir, it's my pleasure. So Shehbaz sahab, topic te achu pya criminal breach of trust. Aksar tama ditho aahe ta amanat mein khayanat jeko aahe na aajkal thodo vadhi vayo aahe ai ke wadi kai shi amanat rakhai pe vane ta hu te chipo theek aahe yari ta bhalai thi vai jo mo wadi achi vai mukhe use bhi karni pave ai je amanat rakhrai aahe po uo jeko aahe ta payo recover kando vate ta in te aha sab kha pehra asan je jeko aahe ta viewers ke yo budhayo ta jeko yo criminal breach of trust aahe आहे छा हिन जो लीगल अगरि असां डेफिनेशन ॾिसूं।
1: एस पर बाबर अगरि लीगल डेफिनेशन ॾिसंदो जेकी पाकिस्तान पिनल कोड में लिखियलु आहे उहा लिखियलु आहे की वेन अ प्रॉपर्टी इज़ हैंडेड ओवर टू समवन एंड दैट पर्सन इज़ यूज़िंग दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन पर्पज आर ही इज़ अ डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी आर यूज़िंग ऑफ द प्रॉपर्टी इलीगली एंड गिविंग लॉस टू समवन एंड गेनिंग इलीगल गेन टू हिमसेल्फ दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। माना कंहिं माण्हू अमानत में कंहिंखे ॾिनी हुजे अमानत तौर शइ त हिन जो ख़्यालु रखिजो, हुनखे पंहिंजे पर्पज़ लाइ इस्तेमालु करे छॾे ऐं हुनजी ख़यानत करे छॾे। दैट डेफिनेशन इज़ कॉल्ड या दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
0: अच्छा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऐं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन ॿिन्हिनि में छा डिफरेंस आहे?
1: बाबा, दीज आर टू डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट। मिस एप्रोप्रिएशन इज़ अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन।
0: ठीकु आहे।
1: बदनीयती सां कंहिं शइ खे काई शइ मिली हुजे या कॉन्सेप्ट। मिस एप्रोप्रिएशन इज़ अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन।
0: ठीकु आहे।
1: बदनीयती सां कंहिं शइ खे काई शइ मिली हुजे या काई शइ ॾिनी हुजे या हैंड ओवर थी हुजे वॉलंटरी।

0: गई थी, फ्रॉम सेल फोन टू मोटर बाइक एनीथिंग, फ्रॉम प्रोमिसरी नोट टू बैंक चेक्स, ठीक आहे, अगर तव्हां जा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हुजनि या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हुजनि, उन्हनि खां वठी करे काई बि अहिड़ी शइ जेके तव्हां खे माण्हू खे इंट्रस्टेड कयो था पिया, कंहिंखे अमानत तौरु वॉलंटरली रखारायो था पिया, पर लेटर ऑन ही इज़ यूज़िंग दैट थिंग फॉर हिज़ ओन पर्पज़ या मिस यूज़िंग इट, और वेदर ही इज़ डिस्पोज़िंग ऑफ, डिस्पोज मतिलब इहो आहे त या त हुनखे हुनखे ख़र्च थो करे छॾे या हीउ सेल आउट हिम सो समवेयर एल्स, ऐं हुनजो जेको बि गेन थो थिए पाण वटि थो रखे पियो, दैट थिंग इज़ कॉल या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बि वञे थी, ऐं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में बि वञे।
1: अच्छा, तव्हां जीअं चयो मूवेबल प्रॉपर्टी जेकी आहे त उहा जेका आहे उनमें अचे पई, हाणे इन में डॉक्यूमेंट जीअं मूं शुरूआत में इंट्रो में बि पंहिंजो ॿुधायो त डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट वटि रखाया वेंदा आहिनि अक्सर, तव्हां ॾिठो हूंदो ब्रोकर्स वटि, ऐं उहे ॾिसंदा आहिनि त बाबा 10-20 रुपया अगरि वधीक मिलनि पिया, उनखे सेल आउट करे छॾंदा आहिनि विदाउट जेको
0: आहे माण्हूअ जी जेकॾहिं ख़बर ई न हूंदी,
1: हुनखे ख़बर ई न आहे, हुनखे चयां मां तुंहिंजो बसि रोज़ी मिले पई, तुंहिंजी शइ मूं सेल आउट करे छॾी, मिस्ट्रस्ट न
0: देट इज़ अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चऊं पोइ हिन खे, त हुन तव्हांखे ट्रस्ट करे ॾिनी, ऐं तव्हां हुनजे ट्रस्ट खे ब्रेक कयो आहे, ऐं उहा शइ अॻिते तव्हां फॉरवर्ड करे छॾी आहे सेल आउट करे, पर हुनखे अञा ताईं इन्फॉर्म न कयो अथव, एंड देट मेन स्टिल इन अ कॉन्सेप्ट देट देट थिंग इज़ अवेलेबल टू देट पर्सन ए बी सी जेको बि हुजे, सो उन जे उन ट्रस्ट खे उन ट्रस्ट जी भंजकड़ीअ खे उन ट्रस्ट खे टोड़ण खे वी कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
1: सही। अच्छा, सेक्शन से अगर अचूं पिया जेको पीपीसी में आहिनि 404-409, इन जो थोरो ओवरव्यू ॾेई वठो त उन में जेके आहिनि इन खां अलावा जेके आहिनि त ॿिया कहिड़ा अहिड़ा जेके आहिनि ऑफेंसिस आहिनि जेके इन सेक्शन जे तहत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे अचनि पिया।
0: पाकिस्तान पीनल कोड में जेके इहे कॉन्सेप्ट आहिनि उहे अचनि था 403 खां वठी, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403, 404, 405, 406, 407, 409 ताईं इहो पार्टिकुलर जेके सेक्शन्स आहिनि, दीस सेक्शन्स आर एलोकेटेड फॉर द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जंहिंमें तव्हांजी डिसऑनेस्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन अचे थी पई, प्लस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अचे थी पई, हैंड ओवर टू द प्रॉपर्टी टू सर्वेंट्स टू क्लार्क्स टू एजेंट्स टू पब्लिक ऑफिसर, ऐं उहो हुनजी अगरि मिसयूस करे, इहे सॼे हिन ज़िमरे में अचनि था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी में।
1: असां लेट्स सपोज एज्यूम कयो असां का शइ जेका हिते कंहिं वटि जेको आहे त बतौर अमानत रखायूं पिया, फॉर एग्ज़ाम्पल असां मोबाइल फोन खे ॾिसी वठूं, ठीकु आहे, ऐं असां चऊं पिया हीउ मोबाइल फोन तव्हां पाण वटि रखो, कलाक खां बाद में मां अचां पियो तव्हां खां वठां पियो, ऐं हुनजो मिसयूज़ पियो करे छॾे, हुनखे पासवर्ड बि हीअं टेड़ी अख सां ॾिसी छॾियईं, ऐं हुनजो मिसयूज़ कयईं, हुन मां नंबर्स कढी वरितईं, डेटा कढी वरितईं, त इहो हिन में अचे पियो।
0: क्लियरिफाई कंदुमि कि अगरि प्रॉपर्टी अगरि काई बि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थिए थो पियो, उन लाइ टे शयूं, किथे टे लिखियल आहिनि, किथे चार लिखियल आहिनि, बरहाल एस पर माय ओपिनियन जेको मां पढ़ियो आहे त हुन में चार शयूं टे शयूं रिक्वायर्ड आहिनि। सभ खां पहिरियों इहा हूंदी आहे त प्रॉपर्टी देट इज़ गिवन बाय समवन वॉलंटरली ॾिनल हुजे, वॉलंटरली इंट्रस्टेड हुजे, इंट्रस्टेड जो मतिलबु आहे उनखे असां अमानत तौर रखारायूं। सेकेंड, देट पर्सन हैज़ इलीगली यूज इट फॉर इट्स ओन पर्पज, वेदर द कॉन्ट्रेक्ट एक्सप्रेसली आर इम्प्लाइडली, इम्प्लाइड जो एक्सप्रेसली इम्प्लाइड जो मतिलबु आहे या त असां वर्बली हुननि खे उहा शइ ॾिनी हुजे,
1: सही
0: रखो पाण वटि, असां तव्हांखे हिकिड़े कंसर्न टाइम ते, हिकिड़े रीज़नेबल टाइम ते असां तव्हांखे वठी छॾंदासीं, या इम्प्लाइडली हुजे, इम्प्लाइड माना एक्शन ऐं कंडेक्स जे थ्रू, जे असां इशारतन चवंदा खणी छॾो, या असां इशारतन चवंदो असांखे ॾेई छॾो, या असां इशारनि ते चवंदो हिनखे हिते रखो, देट इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रेक्ट। टियों आहे, देट मेन, वंस अगेन मां रिपीट थो कयां, देट मेन हैज़ वेदर ही हैज़ यूज़ इट अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्ट्रेक्ट, वेदर ही हैज़ डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीकु आहे, अगरि इन्हनि टिन्हिनि ज़िमरनि में अगरि अचे थो त देट मेन हैज़ कंडक्टेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसअप्रोप्रिएशन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द
1: प्रॉपर्टी।
0: सर, हाणे अचूं था तव्हांजे ॾिनल मिसाल ते, अगरि तव्हांजो दोस्त आहे, तव्हां हुनखे ॾिनी आहे शइ, अगरि हो नॉर्मली तव्हांजे साम्हूं ई पासवर्ड खोले थो, घर कॉल करे थो, उन खां पोइ कोई बि मैसेज आहे कम्युनिकेट करे थो टूवर्ड्स फैमिली, मदर थी वई, फादर थी वियो, वाइफ थी वई, सिस्टर थी वई, देट डज़न्ट मैटर, उहा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में
1: साम्हूं
0: साम्हूं ई न करे, बट यू नो देट के हिन अगरि कॉल कई बि हूंदी घर ई करे। हाणे हाणे हिते छा थियो, डिस्ट्रस्ट कीअं थो क्रिएट थिए, मिसट्रस्ट कीअं थो क्रिएट थिए, कि अगर उही फोन खणी करे उहो ई अगरि को एक्सटोर्शन मनी जे लाइ कंहिंखे तव्हांजो फोन यूस करे एक्सटोर्शन मनी जे करे कॉल थो करे, त इन ई नंबर ते या थ्रू तव्हांजे या मैसेज थो करे, टैक्स थो करे, त मूंखे इलीगल मनी पुॼायो, ठीक आहे न, नाओ ही इज़ अ ब्रेक यूअर मिसट्रस्ट, छो हुन तव्हांजे फोन जो ग़लति इस्तेमालु।

0: इन जो असां इन की एग्जाम्पल ॾेई था सघूं, असां जेके मोबाइल वॉलेट्स हूंदा आहिनि जीएसके शाइज़ी पैसा में पैसा हुजनि
1: तव्हां हुनखे ॾिनो तव्हां पैसा खणी ट्रांसफर करे छॾिया, देट इज़ अ मिस्टर, देट इज़ अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: ओके ओके ओके. सो कुझु मैसेजिस आया आहिनि, फीडबैक आयो आहे, असां उहे शामिल कंदासीं. ऑडियंस जा बि सवाल जेके आहिनि इंक्लूड कयूं पिया. हिकिड़ो ई वॉइस नोट आहे, अचो त ॿुधूं पिया.
2: तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो हुउमि त तव्हांजे टॉपिक सां रिलेटेड मुंहिंजो बि हिकिड़ो सवाल आहे त अगरि कंहिंसां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी वञे त एफ आई आर कीअं दर्ज कई वञे ऐं हुन लाइ कहिड़ा डॉक्यूमेंट या सबूत जी ज़रूरत पई सघे थी असांखे, थोरो हिन ते असांखे ॿुधाइजो.
0: ठीकु आहे अदा तैयब सर, हिननि चयो त अगरि थी वञे थो इहो, पहिरियों त असां अञा थोरो मां चाहियां पियो त तव्हां असांखे एग्ज़ाम्पल्स ॾियो त जीअं असांजो कॉन्सेप्ट थोरो क्लियर थिए. त इन खां अलावा ॿिया कहिड़ा एग्ज़ाम्पल्स थी सघनि पिया, जीअं असीं हवालो ॾिनोसीं पीपीसी जो, ऐं पीपीसी में जेको आहे त 404 में जीअं लिखियलु आहे डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जेको आहे त डिसीट पर्सन, इन जो कीअं थी सघे थो, कंहिंजी विल आहे उन में जेको आहे त का खुर्द बुर्द कई वञे पई ऐं उनजी जेकी छॾियल प्रॉपर्टी आहे उन ते जेको आहे त अख पई विझी वञे.
1: जी मां वन सेकेंड ॿुधायां थो, जीअं असां हिते ज़िक्र कयोसीं उहा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी या मिस ट्रस्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उहा आख़िर प्रॉपर्टी आहे कहिड़ी. वन सेकेंड रिपीटिंग दैट थिंग फॉर द ऑडियंस जेकी असांखे ॾिसे थी ऐं जेकी असांखे ॿुधे थी उन्हनि जे लाइ, अगरि विच में बि अगरि असांखे कंहिं ज्वाइन कयो आहे त उन जस्ट फॉर देयर रिपीटेशन, फॉर देयर सेक ऑफ रिपीटेशन मां उहो शइ ॿुधायां थो. ऐं मूवेबल प्रॉपर्टी, मोबाइल प्रॉपर्टी में सपोज़ अगरि को माण्हू आहे, कंहिंजो सर्वेंट आहे, घर में अकेलो रहे थो, कुराड़ो आहे या को कुराड़ी आहे, ओल्ड एज आहिनि, रहनि था पिया, हुनजी फैमिली ॿाहिरि शिफ्ट थियल आहे, हाणे उहो चई थो वञे पंहिंजे सर्वेंट खे या पंहिंजे क्लार्क खे चई थो वञे त मुंहिंजे अकाउंट में हिन टाइम 20 लख रुपया पिया अथव ऐं जेकी मुंहिंजी गाॾी आहे, अगरि मूंखे कुझु थी वञे त मुंहिंजी गाॾी ऐं मुंहिंजो जेको अमाउंट आहे उहो तव्हां मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स खे शिफ्ट करे छॾिजो.
0: ठीकु आहे.
1: हाणे डिसीज़ पर्सन जे दौरान उहा शइ हुननि खे ख़बर हुई, लेटर ऑन त जॾहिं हुननि इंफॉर्मेशन छा ॾिनी, गाॾी त हुननि हैंड ओवर करे छॾी, हुननि 20 लख जी जॻह ते 5 लख पाण यूज़ करे छॾिया, पाण यूज़ करे छॾिया ऐं बकाया 15 लख ॾिननि, जेकी हुननि 5 लख खया न, देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ
0: ट्रस्ट.
1: ईअं ई कुझु माण्हुनि खे ज़ेवर हूंदा आहिनि, अगरि मिसाल लेडीज़ हूंदियूं आहिनि, कमु करण वारियूं अगरि औरतूं हूंदियूं आहिनि या हुनजी ख़िदमत वारियूं हूंदियूं आहिनि, सर्वेंट्स हूंदियूं आहिनि या मेड सर्वेंट जेके चइबो आहे, अगरि उहो हुननि वटि ज़ेवर
0: आहिनि,
1: सपोज़ हुननि खे 3 तोला 5 तोला या सपोज़ 10 तोला सोनो आहे, त उन्हनि पंहिंजे वली वारसनि खे हाली न ॿुधायो आहे त मूं वटि केतिरो सोनो आहे, पर हुनजे मेड सर्वेंट खे ख़बर आहे. नाओ शी लेडी इज़ डाइड, ठीकु आहे न, औरत गुज़ारे वई, औरत गुज़ारे वञण खां पोइ त नाओ हुन छा कयो, अलमारी खोली, अलमारी मां 1 तोलो 2 तोलो जेको बि सोन जेतिरो खणी सघी हुन क्रिमिनल ब्रीच में नथा अचनि, उहे चवनि था मिसअप्रोप्रिएशन में. मिसअप्रोप्रिएशन जो मां कॉन्सेप्ट वन सेकेंड तव्हांखे क्लियर कयां, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में वॉलंटरी शइ हैंड ओवर थिए थी पई, बदनीयत बाद में थी पैदा थिए, मिसअप्रोप्रिएशन में शइ मिले थी पई या कोई असांखे ॾिए थो पियो, पर इंटेंशन बाद में जेकी डिसऑनेस्टी जेकी पैदा थिए थी उहा लेटर ऑन पैदा थिए थी. इनिशियल हुन जेको न हूंदो आहे, इंटेंशन न हूंदो आहे त मां हीअ शइ मिसअप्रोप्रिएट कयां या हिन अमानत में खयानत कयां. जीअं तव्हां ॿुधायो पिया त अगरि को डिसीज़ कुराड़ो आहे, अगरि को गुज़ारे थो वञे या को विल लिखाए थो वञे, हाणे विल में हुनखे ॿुधायो थो वञे मुंहिंजी 200 एकड़ ज़मीन आहे ऐं मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कई वञे, लेटर ऑन अगरि उहो विल खे एग्ज़ीक्यूट करण वारो उन में सिर्फ़ हेर फेर करे छॾे त न 200 एकड़ मां 10 एकड़ जेकी ज़मीन आहे उहा मुंहिंजी बि आहे, त डेट जेको पॉइंट आहे जाते उहो मिसट्रस्ट क्रिएट थो थिए, देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सो टू डिफरेंट
0: थिंग्स, जीअं मतलबु कंहिं ते ट्रस्ट हूंदो आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त अमानत बि हुनखे ई ॾिनी वेंदी
1: आहे,
0: उहो ट्रस्ट जो अगरि त उहो जेको आहे त
1: क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऐं मिसअप्रोप्रिएशन, दीज़ आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स.
0: सो काफ़ी सारा वॉइस नोट्स बि आया आहिनि ऐं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु बि थी वियो आहे.
1: प्लीज़ ऐं तव्हांजे हुन सवाल ते तैयब जेके अदे पुछियो हुयो
0: हुन सवाल ते वापसि ईंदा, उहो असां ब्रेक खां पोइ ॾियूं
1: पिया. जी ज़रूरु.
0: अदा तैयब, तव्हां असां सां गॾु कनेक्ट रहिजो ऐं असांजा जेके ऑडियंस ॿुधनि पिया उन्हनि खे बि असां हिन मुतालिक़ जेको आहे त इंफॉर्मेशन ॾींदासीं जेको हिननि सवाल कयो, ऐं तव्हांजा बि जेके सवाल आहिनि तव्हां करे सघो था. असांजो नंबर आहे 0300 11 34 88. सो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾियूं पिया.

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फादिये मेहरान सिंध की एक और
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Amma, hey, do some more chaa milia.
5: Chaa milia, putra.

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तनि खां बचाओ। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफ़ां पेश कयो।
3: यार मां छा कयां, किथे वञा, घर में वेठो आहियां पर ठीक ही न आहियां। शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई न ठही।
4: छो भला, छा थियो आहे तोखे? साफ़ साफ़ ॿुधा, मसलो छा आहे?
3: यार हिकु मसलो हुजे त ॿुधायां। मुंहिंजी त मसलनि जी कतार लॻल आहे, न भुख सही लॻे थी ऐं जे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए। पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी। कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
4: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो आहे।
3: हिकु? इहो कीअं?
4: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे। छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त। जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
3: त पोइ मां छा कयां?
4: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स। हे कुदरती जुज़नि मां तयारु कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो। बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
3: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
4: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी। ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
5: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाएं साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-45-01-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
6: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक, NICVD रोड सखर, हैदराबाद ऐं लाड़काणे जो मशहूर। डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी, DHMS, RHMP इस्लामाबाद। जोड़न, संदन जो सूर, कुंदरग जो सूर, कंघे जो सूर, हॾन जो भरण, अध मथे जो सूर, मादे जी अल्सर, मादे जो सूर, ख़ारिश, ॿारनि में कद जो न वधण, मोटापो, इन खां अलावा पित्ते, गुर्दे ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वॻे ताईं। एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक, नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर। हर जुमे ऐं आचर ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ़्त। रश खां बचण ऐं नंबर वठण लाइ 0327-84-60-746।
7: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
8: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
5: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
9: DHMS सिंध,
5: RHMP इस्लामाबाद,
9: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
5: ماہر امراض گردے اور مثانے کی پتھری،
9: بواسیر کا بغیر آپریشن علاج،
5: کمر درد،
9: ارکن نسا،
5: جوڑوں کا درد،
9: ہیپاٹائٹس،
5: وزن کی کمی یا زیادتی،
9: بے اولادی،
5: گنج پن کا مکمل علاج
9: اور دیگر مختلف بیماریوں کے ماہر ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان.
5: ٹائم
9: ہفتے سے جمعرات
5: صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک.
9: آغا ہومیوپیتھک کلینک،
5: پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر.
9: رابطے کے لیے
5: 0326-22-00-440.
10: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آئے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین وتی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
11: سچل کی سرمست دھرتی،
12: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان.
11: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
12: سندھ کی آواز.

0: जी लिसनर्स, प्रोग्राम लीगल कॉर्नर में बाबर शेख आया हमारे साथ गड़ है। मूसा गड स्टूडियोज में मौजूद आए एडवोकेट शहबाज हफीज साहब। मैं अॼु जो असांजो टॉपिक आहे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तमामु दिलचस्प टॉपिक आहे। अवां जो जेको आहे फीडबैक जेको मिले पियो उन मां इहो ज़ाहिर थिए पियो त तव्हां तमामु घणा हिन टॉपिक ते इंट्रस्टेड आहियो। त असां सां गॾु रहिजो, अञा असां वटि 20 मिंट आहिनि ऐं असां 6 वॻे ताईं हिन प्रोग्राम में कनेक्ट आहियूं। सुठी नॉलेज अव्हांखे मिलंदी, स्पेशली एडवोकेट शहबाज हफीज़ साहब जेका तव्हांखे नॉलेज ॾींदो न ॾाढी सुठी हूंदी। ऐं जेके असांखे ॿुधंदा जेके अनॼाणे में ॼाणी वाणी न बल्कि बग़ैर ॼाणी वाणी इहे एक्ट उन्हनि खां थियनि पिया त उहे मां सम्झां पियो त उन्हनि खे ख़बर पवंदी त यार हिन जी पनिशमेंट जेका आहे न उहा थी सघे थी।
1: माण्हू असां वटि करे त वेंदा जी हुनखे ख़बर न हूंदी आहे त इंटेंशनली असां कयूं छा था, अनइंटेंशनली कयूं छा था पिया।
0: अच्छा शहबाज़ साहब, अचूं पिया हिन जी पीपीसी सेक्शन 407 में हवालो ॾिनो वियो आहे त ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एंड वेयर हाउस कीपर्स एक्सेट्रा। कीअं पिया ॾिसो हिनखे काई शइ कंहिंखे मतिलबु मिले पई कंहिंखे पहुचाइण जे लाइ उन में विच में हू ख़यानत पियो करे, या वेयर हाउस कीपर थी विया या बिज़नेसमैन थी विया कंहिंखे अगरि पोयां हैंड ओवर करे वञनि पिया पंहिंजो बिज़नेस ऐं उन में हू ख़यानत करे उन जूं शयूं मिस यूज़ करे उन ते थोरो
1: मां हिनखे ईअं चवंदुमि। जीअं तव्हां कोई बि कोरियर सर्विस खणो, चाहे उहो गवर्नमेंट हुजे चाहे उहो प्राइवेट हुजे, तव्हां कोई कोरियर सर्विस जे थ्रू तव्हां पंहिंजो क़ीमती सामान मोकिलींदा या ऑनलाइन ज़रिए अगरि तव्हां ऑर्डर था कयो त उहो ऑनलाइन जे ज़रिए तव्हांजे घर सामान पुॼंदो अचे। सपोज़ तव्हां मोबाइल ऑर्डर कयो आहे, उहो मोबाइल ऑर्डर करण जे टाइम जॾहिं तव्हां हिते पुॻो त मोबाइल तव्हांखे डॿो त मिलियो पर मोबाइल न मिलियो, उहो विच में जेको मोबाइल गुम थी वियो, इहो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हिकिड़ो फनी मां तव्हांखे ॿुधायां, जीअं सपोज़ हूंदो त न हूंदो त न, जीअं असां वटि हाणे फूड सर्विसिस हले थी पई, सपोज़ कोई फूड सर्विस जे दौरान कोई हिकिड़ो ऑर्डर थो करे छॾे ऐं ऑर्डर जे दौरान घर ताईं पुॼंदे पुॼंदे हुन में हिकिड़ो ऑर्डर गुम थो थी वञे, ठीक आहे, त उहो जेको ऑर्डर जो गुम थियणु या ऑर्डर खे ॿी काई जॻह ते डिलीवर करणु, पैसा पूरा वठी छॾणु, उहो जेको हुन विच में जेको मिस अप्रोप्रिएशन थिए थी, दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
0: अच्छा हिन ते अक्सर थींदो आहे शहबाज़ साहब त स्पेशली असां काई शइ कॾहिं कॾहिं काई बि शइ खाइण वारी घुराईंदा आहियूं त जेको वठी
1: पूरो अवेलेबल
0: खाईंदो ईंदो आहे रस्ते में,
1: सामान अवेलेबल न हूंदो आहे, या हुनखे सपोज़ हाणे हिकिड़ी बिरयानी जो पैकेट आहे, अगरि हुन 10 चमचा हुन हणी छॾिया त असां हुन खां न पुछंदासीं त छा आहे, पर ॾिठो वञे त उहो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करे थो। कोरियर सर्विस से मां सपोज़ कोरियर, हाणे असां कोरियर सर्विस जे थ्रू असां पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स मोकिलींदा आहियूं, कपिड़ा मोकिलींदा आहियूं, फर्नीचर्स मोकिलींदा आहियूं, कोई बि अहिड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर्स हूंदा असां मोकिले छॾींदा आहियूं, ठीकु आहे, अगरि या शूज़ बि मोकिलींदा आहियूं या असां कपिड़ा, अगरि ड्यूरिंग इन दौरान अगरि उहो शख़्स या उहो इंसान या उहो को सर्विस अगर उन्हें के मिसयूज करे पेंजे पर्पज ला इस्तेमाल करे छे थी, फ्रॉम दैट पॉइंट ही इज अ क्रिएटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वेयर हाउसेस में ये सपोज तहो हाँ इन साल मून तो ठे नारायण कागान वन जो गर्मी भी अचन थी पयूं, मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई हलो वेंदो आ, तां पेंजे पाड़े में पेंजे लोकेलिटी में गाड़ी बिहारींदो,
0: ओके,
1: तो हे मुझी गाड़ी के तां संभालियो, या पेंजी मोटरसाइकिल बिहारे वेंदो गाड़ी तां खणी ता वञो, या अगर बाय फैमिली तां वञो तां ट्रेन जे थ्रू सफर कंदो। हाणे तां के कंहिं जॻह ते कंहिं गैरेज ते गाॾी बीहारे छॾी, चाबी बि ॾेई छॾी, हाणे हुन शख़्स छा कयो, हुन गाॾीअ खे मुसलसल टैक्सी करे यूज़ करे छॾियो, हुन में तव्हां हुनखे एज़ अ वॉलंटरली हैंड ओवर कई प्रॉपर्टी त मां हिकिड़ी प्रॉपर टाइम ते या हिकिड़े पर्टिकुलर टाइम ते मां ईंदुमि, तव्हां इहा शइ वठंदुमि, अगरि हिन में जेको बि तव्हांजो जेको हूंदी महिनत हूंदी, आई विल पे टू यू एज़ पर द कॉन्ट्रेक्ट, जेको मां तव्हांखे चयो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रेक्ट हूंदो आहे या इम्प्लाइड कॉन्ट्रेक्ट हूंदो आहे, एज़ पर हिन कॉन्ट्रेक्ट जे हिसाब सां। पर लेटर ऑन छा कयो, जीअं तव्हां नारायण ऐं कागन जे सफ़र ते निकितो, फ्रॉम नेक्स्ट डे दैट मीन यूज़ दैट योर प्रॉपर्टी एज़ अ टैक्सी, या हुनखे कंहिं बि कंहिं सर्विस जे थ्रू हुनखे हलाइण शुरू करे छॾियो, हुन मां अमाउंट कमाइण शुरू करे छॾे, तव्हांखे ख़बर ई न, उहो जेको यूज़ेज आहे न फॉर पर्सनल गेन ऐं कंहिंजे पर्सनल लॉज जो, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
0: ओके, ऐं ईअं अक्सर थींदो आहे तव्हां प्राइवेट मुलाज़िम जेके आहिनि, प्राइवेट जेके आहिनि त कंहिं जॉब वग़ैरह कंदा आहिनि ऐं बिज़नेस वग़ैरह हुननि जे जॾहिं हैंड ओवर कनि पिया को सामान,
1: स्टोरेज हूंदा आहिनि, वॾा स्टोरेज हूंदा आहिनि, मिसाल मेडिसन स्टोरेज हूंदा आहिनि, फर्नीचर स्टोरेज हूंदा आहिनि, मोबाइल स्टोरेज हूंदा आहिनि, कंप्यूटर स्टोरेज, हाणे कंहिंखे को 1000 हिकिड़ा सेल फोन हैंड ओवर करे थो, हाणे 1000 मां अगरि हो ॿ फोन बि खणी थो छॾे, को मायना त नथा रखनि, 1000 फोन मां ॿ फोन बि अगरि खणी थो छॾे हलियो थो वञे, दैट इज सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड मिसट्रस्ट, उन मिसट्रस्ट खे ई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चवंदो आहे, छोकी अमानत में ख़यानत थिए थी पई, प्रॉपर्टी वॉलंटरली वञे थी, को भरोसो करे ॾिनो थो वञे त यू आर बींग पेड फॉर दैट थिंग, ऐं पेमेंट वठण खां पोइ बि जेकॾहिं इंसान हुन खे यूज़ करे पंहिंजे पर्सनल गेन जे लाइ देट इज़ कम इन द एम्बिट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: ओके, अच्छा, हीउ ब्रेक ते वञण खां पहिरियां पाण खे सवाल
1: आयो,
0: सो उन्हनि सवाल कई त एफ आई आर कीअं कराइजे अगरि इन केस ई थींदो. उनजे सवाल खां पहिरियां हिकिड़ो सवाल, अगरि इहो थिए पियो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थिए पियो, त कीअं आइडेंटिफाई कजे त हीउ सिविल नेचर आहे या हीउ क्रिमिनल नेचर आहे? सिविल कोर्ट में कहिड़ा केसिस वञी सघनि था या एफ आई आर जे लाइ जेके आहिनि?
1: आई गॉट योर पॉइंट, नाउ मूव टू 30 मिनट्स ब्रेक, पोइ ते था वञूं. मां तव्हांखे चयुमि की सिविल मैटर्स में ऐं क्रिमिनल मैटर में टे शयूं तव्हांखे अमूमन मेन इनग्रीडियंट्स आहिनि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जा. हिकु त प्रॉपर्टी इज बींग वॉलंटरली ट्रांसफर्ड, वॉलंटरली असां इंट्रस्टेड कई आहे टू समवन. ॿी इहो ई आहे त एज़ पर कॉन्ट्रेक्ट देट इज़ कंडक्टेड बिटवीन द टू पार्टीज़ एक्सप्रेसली ऐं एम्प्लाइडली, के हे तव्हां प्रॉपर्टी रखो ऑन द सर्टन डेट ऑन सर्टन टाइम ऑन द रीज़नेबल पंहिंजो जेको आहे न मौके ते अची करे, ओकेजन ते अची करे, आई विल टेक देट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, तव्हां खां मां इहा प्रॉपर्टी वापसि वठंदुमि. अगरि हुन में अगरि को मिसाल तव्हां हुन जे मथां को ख़र्च कयो हूंदो या हुनजी लुक आफ्टर कई हूंदी, आई विल पे यू. ठीकु आहे, पर उहो छा थो करे, उन कॉन्ट्रेक्ट खे ब्रीच थो करे. टी पॉइंट इहो आहे त देट पर्सन इज़ डिस्पोसिंग ऑफ, डिस्पोसिंग मतिलबु हुनखे इस्तेमालु थो करे, या देट पर्सन इज़ रिमूविंग, या हुनखे डिस्ट्रॉय थो करे छॾे. सो उन छा थो करे त वॉलन उन शइ खे, उन पूरे जे पूरे कॉन्ट्रेक्ट खे उन एज़ पर लॉ हुनजी वायोलेशन करे थो. त इहे टे इनग्रीडियंट्स लाज़मी आहिनि जेको क्रिएट कंदा कि इहो सिविल नेचर खां हटियल आहे, छोकि प्रॉपर्टी में शुरू में बदनीयती न हूंदी आहे, लेटर ऑन बदनीयती क्रिएट थी वेंदी आहे, त हुनखे यूज़ थो करे. हाणे सिविल में छा आहे, सपोज कंहिंखे खां पैसा वरिता, हो पेमेंट त ॾींदो थो अचे, पर ड्यू टू सम लॉस हाणे उहो पेमेंट नथो करे सघे. उन में बदनीयती न आहे, हो कुझु मसलनि जे करे, हालातनि जे करे हो तव्हांखे कुझु पेमेंट्स न ॾेई सघियो आहे. हिते छा आहे, हिते इंसान हुन प्रॉपर्टी खे मिसयूज़ थो करे छॾे. ठीकु आहे, इहो डिफरेंस आहे क्रिमिनल.
0: शहबाज़ साहब, हीअं अक्सर थींदो आहे, तव्हां ॾिठा हूंदा पंहिंजी हुन प्रैक्टिस में, त पैसा ॾींदे ई ॾींदे हमरा कंहिं बि ॻाल्हि ते तल कलामी थी वेंदी आहे, चवंदो आहे न ॾींदोमांइ पैसा, जेको करणो अथई वञी कर. पोइ बि सिविल जी तरफ़ ईंदो या
1: सिविल थींदो? उहो स्पेसिफिक में वेंदो तव्हांजो कॉन्ट्रेक्ट आहे न, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट तां हलिया वेंदो होॾे, सिविल जी तरफ़ हलिया वेंदो तव्हां. हिते छा आहे, हिते अगरि मां तव्हांखे कुझु एक्स्ट्रा पॉइंट ॿुधायां, जीअं असां बेलमेंट हूंदी आहे न, प्लीज हूंदी आहे, बेलमेंट हूंदी आहे, मॉर्गेज हूंदी आहे. हाणे प्लीज ऐं बेलमेंट जी तरफ़ अगरि मां ईंदुमि, कॉन्सेप्ट आहिनि इहे बेसिकली कॉन्ट्रेक्ट एक्ट जा, त बेलमेंट में छा थींदो आहे, त इंसान वॉलंटरली जेको आहे न प्रॉपर्टी खे ट्रांसफर थो करे विदाउट जेको आहे न गिविंग पोज़ेशन, पोज़ेशन न ॾींदो, सॉरी पोज़ेशन ॾींदो, एंटाइटलमेंट न ॾींदो, मालकी न ॾींदो, मालकी माण्हू वटि ई रहंदी, पोज़ेशन ॾेई छॾंदो. हाणे उहो चवंदो त मां तव्हां को सर्टन टाइम ते अची करे इहा शइ वापसि वठंदो, उहो हुनजो लुक आफ्टर कंदो. इन जो हिकिड़ो सवलो मिसाल ॾियां, तव्हां के माण्हू खे चओ त साईं हे मुंहिंजो 5 किलो जो जेको चांवरनि जो बोरो आहे तव्हां रखो हिते, ऐं इहो फाइन बहितरीन क़िस्म जो हे चांवर आहे, ऐं हाणे तव्हां रखाए हलिया वियो, चई मां तव्हांखे सुभाणे इहो खणी वेंदुमि. हाणे माण्हुनि छा कयो त ॾिठो हे चांवर तमामु सुठो, उन मां 1 किलो चांवर खणी करे विकणे छॾी, ऐं पंहिंजो लो क्वालिटी जेको चांवर आहे मिलाए छॾी. उनखे मिसयूज़ आहे न, जेको हुन चांवरनि खे मिसयूज़ करे छॾियो, हुन चांवरनि खे पंहिंजे पर्पज़ लाइ तो गेन कयईं, विकतई, उन मां हुनखे पैसा मिलिया, वरी पंहिंजो लो क्वालिटी जो चांवर तव्हां सां मिलाए छॾियईं. उहो जेको मिलाइण जेको जेको जेको फेज़ आहे न, उन फेज़ खे असां चवंदा आहियूं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: ऑल राइट, अक्सर त कोई अगरि ॿुधाए वञे चांवर सुठी क्वालिटी वारो हमरा त पचाइण शुरू थी वेंदो,
1: थींदो आहे कॾहिं कॾहिं थींदो आहे, या त ॾिसो न, या त
0: हुनजी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे न, हुनजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू लुक आफ्टर हिम. असल मां तव्हांखे छा चयुमि, बेलमेंट जेके चवंदो आहे, अमानत तौर रखाइण, प्लीज बि असां छा चवंदा आहियूं, अमानत तौर रखाईंदा
0: आहियूं.
1: प्लीज में छा थींदो आहे त सिर्फ़ सिर्फ़ असां को लोन वठंदा आहियूं कंहिं पर्पज़ जे लाइ, त जॾहिं मां लोन तव्हांखे वापसि करे छॾंदुमि, तव्हां इहा प्रॉपर्टी काइंडली मूंखे हैंड ओवर कंदो.
0: सो
1: इनखे चइबो आहे अमानत में शुरू में बदनीयती. मां वंस अगेन रिपीट थो कयां, आई एम रिपीटिंग देट पॉइंट, नॉट बिकॉज ऑफ द लिसनर, नॉट बिकॉज द दोस पर्सन हू आर लुकिंग अस या वॉचिंग अस, बट फॉर द दोस पर्सन जेके असांखे विच में बि अगरि असांखे कंहिं ज्वाइन कयो आहे, त हुनखे इहा ख़बर पइजी वेंदी वाट काइंड ऑफ टॉपिक इज़ बींग डिस्कस बिटवीन द बाबर एंड सर शहबाज़.
0: तैयब जो सवाल ते अचूं पिया,
1: हाणे मां तैयब जिन सवाल ते ईंदुमि, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी. मिसल सपोर 400 जे अगरि तव्हां डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में वेंदो, हुनजी पनिशमेंट 2 साल आहे, ईअं अगरि तव्हां 400 में 403 में ईंदो हुनजी पनिशमेंट 3 साल आहे. ईअं तव्हां अगरि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हुनजी बि 3 साल
0: आहे.
1: डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड इन द कंडीशन दैट क्राइम इज़ बींग डन.
0: तो
1: डिपेंड करे थो लाजमे 2 सालनि खां वठी करे वेंदे 10 साल ऐं प्लस लाइफ इम्प्रिज़मेंट ताईं बि हिन जी सज़ा आहे. पर अमूमन छा आहे 10 साल. इहो मैजिस्ट्रेट ट्रायल बि आहे, इहो सेशन ट्रायल बि आहे.
0: ठीकु आहे. अच्छा, हिकु ॿ ॿिया बि असां वटि वॉइस नोट्स आहिनि जेके मां इंक्लूड कयां पियो.
1: जी जी.
2: अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद. मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो इसी मुतलक मेरा एक सवाल है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग में क्या फर्क होता है, आम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, इसका जवाब दें प्लीज.
1: वेरी गुड
0: क्वेश्चन, सवाल किया. अच्छा सवाल किया है ज़ुबैर आपने. जी
1: थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर, इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय यू. चीटिंग इज काइंड ऑफ डिसेप्शन, इज काइंड ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स फॉर एनीथिंग. अगर ईअं सम्झो त ठगी करणु, जंहिंखे धोखो ॾियणु, कंहिं माण्हू खे यकीन ॾियारण, माना एतिरो इंड्यूस करे छॾण त जेकी इहा शइ आहे इहा वाकई मुंहिंजी आहे, मूंखां तूं ख़रीद कर, जॾहिं तूं उहा शइ हुनजी नाहे. मिस्ट्रस जो मां तव्हांखे इहो ॿुधायां, डिसेप्शन चीटिंग ऐं मिसअप्रोप्रिएशन जो इहो आहे त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ वंस अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट के बदनीयती फ्रॉम द बिगनिंग आहे. चीटिंग में जेकी डिसऑनेस्टी आहे उहो शुरू खां
0: ओके,
1: ही इज़ इंटेंशन टू डिसीव दैट पर्सन, माना बाद में क्रिएट न थियो आहे. जेको मैंसरी आहे, जेको एक्सरी आहे, जेको मैंसरी आहे, इंटेंशन जेके असां चऊं था, जेको मैंसरी आहे उहो स्टार्टिंग में ई क्रिएटेड आहे.
0: यस यस,
1: ठीकु आहे न. लेटर ऑन माण्हू छा थो करे त एक्सरी आहे त हुन सां गॾु आहे, पर जेको मिसअप्रोप्रिएशन में जेकी थिए थी उहा मैंसरी आहे तव्हांजो, जेके असां चवंदो बदनीअ थी, उहा शुरू में न आहे, उहा लेटर ऑन क्रिएट थी थिए. मूंखे अगरि हिकिड़ो मोबाइल थो मिले रोड ते, मां खणी छॾियो, माना आई हैवन्ट फाउंड द रियल ओनर, मूंखे न आहे ख़बर, पर मां हुनजी पब्लिकेशन बि करायां थो, मां पाड़े में अनाउंसमेंट बि करायां थो, मां लोकेलिटी में न्यूज़ बि फैलाए थो छॾां, अगरि मुंहिंजो सर्किल आहे मां हुते व्हाट्सअप ते मैसेज बि हलायां थो, मां फेसबुक ते हिकिड़ी वीडियो बि चाढ़े थो छॾां त हे मोबाइल कंहिंजो आहे, अगरि जेको बि रियल ओनर हुजे अचे मूंखां वठे,
0: वठी वञे,
1: ठीकु आहे. हाणे मुंहिंजी लुक आफ्टर कंदुमि, केयर कंदुमि, पर मोबाइल मूंखे मिलियो, मूंखे ख़बर आहे मोबाइल बाबर जो आहे, पर स्टिल आई एम नॉट गिविंग that thing to the barber. Natho diya ma, I know where is the barber live, what is the location of the barber, in where place, in which place the barber is working,
0: sahi
1: unji service ka tha, but still that thing I'm using for my own purpose, that thing is called misappropriation. Intention baad mein create to the
0: sahi wo misappropriation
1: cheating mein shuru mein tha jo intention hi dhoko dena.
0: All right
1: theek hai na. That's a difference between cheating and misappropriation.
0: Ek bio sawal bhi asan wate aaya hai program mein shamil kyon pya.
3: Assalamu alaikum sir, my name is Afzal Nisar. जीअं त तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियूं. असांजो हिकिड़ो नंढड़ो सवालु हुयो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे हिसाब सां अगरि कोई बि माण्हू जेको आहे सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे थो पियो त ज़ाहिर आहे कानून जे मुताबिक़ हुनखे का सज़ा बि ॾिनी वेंदी. थोरे बारे में असांखे गाइड कजो त जेको आहे सो उनजी केतिरी सज़ा आहे ऐं असां हुनखे कहिड़े तरीक़े सां सज़ा ॾियाराए सघूं था.
1: बहुत कुझु आहे सेम, त इहे बि साॻियो
0: कुझु छाकाणि प्रोग्राम जे वक़्त बि पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे. धेन असां कंक्लूड कयूं पिया
1: विथ यू, माई विथ यू टाइम गुज़री वेंदो आहे, ख़बर ई न पवंदी.
2: वालेकुम सर, आई एम मोहम्मद मेदीशा. तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियासीं. जीअं त तव्हांजो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे हिसाब सां टॉपिक हले पियो, हुन में हिकिड़ो मुंहिंजो सवाल हुयो त पाकिस्तान पेनल कोड में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जी सज़ा छा आहे, इहो ॿुधाइजो थोरो.
1: सज़ा हिन जे करे पुछनि था पिया त असांजी इहा सोसाइटी में आम जाम शइ आहे, नॉर्मल शइ आहे, माना एज़ यूजुअल बेसिस ते थिए थी पई. सो कोशिश इहो करनि था त अगरि कोई हुननि सां धोखेबाज़ी करे थो
0: पियो
1: या हुनजी अमानत में कंदो, हुनखे सज़ा खे ॾियारे. सो बहितर इहो आहे त सज़ा ॾियण खां बहितर
0: आहे छोकि
1: ॾिसो न, असां लफ़्ज़ लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस दैट पर्सन या ए बी सी पर्सन. अगरि कोई माण्हू क्राइम थो करे न त उहो इंडिविजुअल सां क्राइम नथो करे, उहो पूरी सोसाइटी सां क्राइम थो करे. त देट इज़ द रीज़न जॾहिं बि असां क्रिमिनल केसिस में लॻंदा आहियूं स्टेट वर्सिस ए बी सी माना हिन शख्स हिक इंसान सां क्राइम न कयो आहे, पूरी रियासत सां क्राइम कयो आहे, छोकी रियासत इज़ अ मदर, छोकी स्टेट हूंदी आहे मदर हूंदी
0: आहे,
1: जो रोल मदर वारो हूंदो आहे टू प्रोटेक्ट टू फीड एंड टू गिव टू इट्स इंडिजन जेके माण्हू आहिनि, जेकी हुनजी पब्लिक आहे, जेकी हुनजी आवाम आहे, उन्हनि खे जेको आहे न इहे टई शयूं मुहैया कनि स्टेट जो कमु
0: आहे।
1: सो इहे इंडिविजुअल सां क्राइम न हूंदो आहे, पूरी स्टेट सां
0: क्राइम हूंदो आहे। सो एक कॉलर शामिल था करे वेठो, देन असां प्रोग्राम खे कंक्लूड कयूं
1: पिया। असां कंहिं लाइव कॉलर जेके मोस्ट फेमस एंड लाइकेबल सेक्शन,
0: सो लेट्स सी लाइन ते गॾु केरु आहे। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, फिलहाल साहब ख़ुश आहियो?
0: जी जी अदा अलहमदुलिल्लाह। सवाल कहिड़ो पुछण चाहींदव अदा?
4: अदा मां सवाल इहो कंदमि, अॼु में बि तव्हां सां सवाल कयो, तकरीबन अध खां सवाइ अमल थी चुको आहे, वरी बि अर्ज़ु कंदासीं।
0: जी
4: हा, त हीउ जेको तव्हांखे मां चयो अॻे हफ़्ते त माना ड्रग्स ऐं आइस भंग वग़ैरह एम्पायर नाके रोड ते हले थी,
0: ठीकु आहे,
4: त हिन ते गवर्नमेंट सिंध पुलिस असांजी ॾाढो हिते मां ॾिसां थो कमकार एॾी तेज़ीअ सां थी करे, जे मवाली या मंशात वारा दर पदर करे छॾिया अथऊं, ॾाढो बहितर था कनि,
0: असांजी
4: दिलि ख़ुशि थी थिए।
0: तव्हां ईअं ई पॉइंट आउट कराईंदा रहंदा कयो, इनशाला ताला कारवाई थींदी, मंशात फरोश जेके बि आहिनि इन्हनि खे बसि सज़ा मिलंदी, ठीकु आहे।
4: सरकार मां त माना पकड़ायान बि, पर हिते छो अहिड़ो या एस पी मां सां हुजनि, मां क्राइम वारा अहिड़ा माण्हू पकड़ायानि जेके सॼी ज़िंदगी गवर्नमेंट न पकड़े सघी आहे, इलाही माण्हू मूं वटि आहिनि जेके मां ॾिसां थो, उन्हनि जा अखाड़ा ॾिसां थो, मूंखे जे माना को तंग न करनि त मां गवर्नमेंट सां वॾी हेल्प कयां।
0: तव्हांखे कोई बि न कयो,
1: बेसिकली ही इज़ माना वर्किंग एज़ अ सुपर हीरो। अगरि कोई पंहिंजी सुसाइड ॾिसो, आसमान मो खिलाई मखलूक हर टाइम सुपरमैन त न ईंदो, जेकी दुनिया ठाही आहे आयरन मैन मार्वल सीरीज़ सां, जेके माण्हू हुयूं जेके अगरि पंहिंजी सोसाइटी में अगरि काई बि शइ खे पॉइंट आउट कयूं था पिया, अगरि काई बि अहिड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी खे रेस्ट्रिक कयूं था, बेसिकली वी आर डूइंग द वर्क ऑफ सुपर हीरो, चाहे उहो नंढे बेसिस ते कयूं चाहे वॾे बेसिस ते कयूं। तमामु बहितर आहे, डू अप्रिशिएट हिम के हुननि इहो जेको आहे न कमु
0: करे, जेको आहे न अक्सर प्रोग्राम में असांखे पॉइंट आउट

0: करायो
1: बेहतरीन ब्रावो टू हिम तमाम सुठो जीअं कंदा रहो सर पंहिंजी सोसाइटी खे हेल्प आउट कयो
0: वक़्तु मुख़्तसर आहे शहबाज़ साहब लास्ट कॉलर पाण शामिल था कयूं
2: वालेकुम
0: अस्सलाम जी अदा पप्पू अञा हले पई चलो बिल्कुल अवी मौको दूं पा थोड़ो इलाके जो पॉइंट आउट करा कड़ो एरिया है किथे पई खुले आम हले मंशात सोबो देरो ओके सो बाबा बुधन पा पुलिस वारा जे त इन एरिया के पॉइंट आउट कर उत वही भराय मंशात अगर हले पई तो उन हथी दियो उन वही
1: कुछ पॉइंट ते एड कंदुमि
0: पकड़े जो
1: जी बिल्कुल टूरिस्ट जी हाणे अदे वारनि हिकिड़ो ज़िक्र कयो त पुलिस वारनि हुते वॾो बहितरीन मां आई हेड्स ऑफ देम माना मां सल्यूट पेश कंदुमि सलाम पेश कंदुमि हिननि पुलिस वारनि खे जेके इन एक्टिविटीज़ खे रोकनि था ऐं पंहिंजी जाननि जो क़ुर्बानी बि ॾियनि था ऐं पंहिंजी जाननि खे जेको आहे न रिस्क ते रखी करे ऐं इन्हनि एक्टिविटीज़ खे जेको आहे न बंदि कराइनि था सो मां जीअं अॻुणे चयुमि त सुपर हीरोज़ मथो न ईंदा आहिनि सुपर हीरोज़ असांजे अंदरि ई
0: हूंदा
1: अगरि इहे पुलिस वारा अगरि पंहिंजी डे नाइट पंहिंजी पब्लिक जे करे अगरि पंहिंजी लाइफ खे रिस्क ते खणी हलनि था फॉर मी दे आर आयरन मैन फॉर मी दे आर सुपरमैन फॉर मी दे आर द बैटमैन सो मार्वल ऐं डीसी खे ॾिसणु न खपे असांजे अंदरि ई सुपर हीरोज़ अवेलेबल आहिनि वॾी तमामु इहा अप्रिशिएबल ॻाल्हि आहे मां अप्रिशिएट कंदुमि हुन पुलिस वारनि खे जेके हिननि जॻहियुनि ते वञी करे असांखे प्रोटेक्ट करनि था ऐं जेको आहे न पूरे जो पूरे जेको आहे न सोसाइटी खे क्लीन रखनि था पिया इन नासिर्स खां
0: बिल्कुल शहबाज़ साहब प्रोग्राम जो पुराणी ते पहुतो आहे इलाही शयूं पंहिंजी रहिजी वयूं आहिनि लास्ट में कीअं अव्हां असांजे जेका व्यूवर्स खे पैगाम ॾींदा त जीअं उहो जेका इहा आहे ब्रिच ऑफ ट्रस्ट आहे ऐं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे इन खां बची सघनि
1: मां हिकिड़ो इहो ई चवंदुमि त दे डू डिस्टिंग्विश बिटवीन
0: ओके
1: अगरि तव्हां खां प्रॉपर्टी ॾियो था पिया त कोशिश कयो त हुनजा आई विटनेसिस ज़रूरु हुजनि
0: ऑल राइट
1: ठीकु आहे ऐं आख़िर में इहो चवंदुमि त अगरि सपोज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थियो आहे त पहिरियों ई तव्हां पंहिंजे कंसर्न एस एच ओ खे पुलिस खे पंहिंजी इंफॉर्मेशन ॾियो एस पी कंप्लेन सेल ते ॾियो उन्हनि जे ख़िलाफ़ तव्हां अगरि तव्हां वटि रसीदूं आहिनि अगरि तव्हां वटि एविडेंस आहे तव्हां वटि वीडियो आहे तव्हां वटि मैसेजिस आहिनि तव्हां वटि व्हाट्सअप कॉल्स आहिनि अगरि तव्हां को घुरे त तव्हां पहिरों त तव्हां एंटाइटलमेंट ॾेखायो मालिक ई ॾेखायो इहा शइ तव्हांजी आहे उन खां पोइ तव्हां हिननि जे लाइ ईज़ीली एफ आई आर दाख़िल करे सघो था पिया त मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त अगरि कोई बि कंहिं बि शइ माण्हू खे तव्हां अमानत ॾियो त कोशिश कयो त तव्हां उनखे जेको आहे न हैंड ओवर करण जे टाइम हैंड ओवर करण जे टाइम कैटेगोरिकली ॿुधायो त मां तव्हांखे अमानत तौर थो ॾियां काइंडली मूंखे ख़यानत न कजो
0: अच्छा हिन ते मुख़्तसिर इहा ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में अची पई अक्सर मूं ॾिठो आहे मुंहिंजे साम्हूं सोसाइटी में अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे अगरि अमाउंट मनी वग़ैरह असां हुननि खे अमानत लाइ रखिया आहियूं पिया न त हू चवंदा आहिनि हीउ ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज़ थी वियो आहे असां हिन अमाउंट खे यूज़ कंदासीं पोइ आहिस्ते आहिस्ते किस्तनि में मोटाए ॾींदासीं हुननि खे त इहो त असां चऊं न त हू बाक़ायदा तौर ते ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कनि पिया अमानत में ख़यानत करे रहिया आहिनि ऐं स्पेशली जेको ट्रस्ट करे तव्हां वटि कुझु रखाए पियो जी
1: ॾिसो न भई तव्हां पाण ई लफ़्ज़ ॿुधायो सवाल जो जवाब बि तव्हां पाण ॾिनो त अमानत तौर रखा
0: अमानत तौर
1: हाणे अगरि हुन मां हिन रुपियो बि अगरि ज़ाया करे छॾियो रुपियो बि अगरि पंहिंजे मथां इस्तेमालु करे छॾियो त उहो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ई वञे
0: ओके
1: ठीकु आहे न बाबर
0: त लिसन्स बिल्कुल प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो शहबाज़ हफ़ीज़ साहब जेको आहे असांखे सुठी नॉलेज ॾिनी आहे अबाउट द टॉपिक ऐं तव्हांजी महिरबानी शहबाज़
1: सुठो लॻो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिटर्न इन द सेम प्लेस विथ यू
0: अच्छा तव्हां शुरू में चयो त तव्हां जेको आहे इहो जेको ॿ टे प्रोग्राम्स में तव्हां न अचे हुन जो तव्हां रीज़न
1: मुंहिंजो रीज़न बाबर इहो त आई वॉज़ बिज़ी इन माई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन अलहमदुल्ला मां क्वालिफाई कयां so I was once again I am going to appear in interviews
0: inshallah
1: kuch examination bhi abhi hain plus college ja kuch lectures ja plus me assignments wagera hain jinde kare ma taake time nahi sakyo but mukhe khushi a ta taaje jeke panel advocates han je sir amjad sahab achi ho inke bhi aindar asanja panel advocates han un me ma inke big shout out dinu to we bhi tamam sutho taan sa gad cooperate karan
0: ta ai
1: jeko taan jo vision a legal corner jo unke carry on kare akte khani halan ta pya मुंहिंजो त ख़्वाहिश इहा ई आहे की आई शुड नॉट बी ओनली द वन हियर तव्हां सां गॾु पूरी टीम हुजे पैनल जी कंहिंखे हर वीकेंड ते अची करे तव्हां

0: कंहिं पंहिंजे आवाम खे जेके बि आहिनि उहो डिफरेंट क़िस्म जी लीगल नॉलेज प्रोवाइड करनि ऐं सोल्यूशन्स ॾेई सघनि हुननि खे।
1: ऑल राइट, सो व्यूअर्स तव्हांजी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया सभई, ऐं कंहिंजा अगरि फीडबैक्स रहिजी विया हुजनि उन्हनि खां मां माज़रत खायां। टॉपिक सां रिलेवेंट तव्हां इहा ई
0: ॻाल्हि, 45 मिंट जे प्रोग्राम में, 35 मिंट प्रोग्राम में कोशिश कंदा आहियूं पूरे समट खे हिकिड़े कूज़े में जेको आहे न समाए सघूं, पर अगरि होपफुल अगरि कोई सवाल रहिजी हुजे, अगरि को कॉन्सेप्ट समुझ में न आयो हुजे, नेक्स्ट टाइम तव्हां असांखे व्हाट्सअप करे सघो था, तव्हां कॉल करे फीडबैक ॾेई असां हुनखे रेक्टिफाई
1: कंदासीं। बिल्कुल
0: फीडबैक हुजे ॾेई छॾियो, अगरि असां बि इंसान आहियूं, असां को बि ख़तम थी सघनि थियूं, अगरि असां को अगरि एक्सप्लेनेशन करण में को ख़तम थियो, खता थी हुजे, का मिस्टेक, तव्हां काइंडली असांखे रेक्टिफाई करे सघो था, असां हुनखे इहो एरर डिटेक्ट करे असां हुनखे रेक्टिफाई कंदासीं इनशाला।
1: सो असांजो फीडबैक जे लाइ नंबर आहे 03000113488। सो अगले प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त, अलाह हाफ़िज़।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: DAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: काश करे सके तो अमरीकी गुझे इदारे CIA ट्रंप इंतजामिया के आगाह करे छो। आलमी नशरियाती इदारे मूजिब CIA पंजी नई रिपोर्ट में जानायो आहे त तेहरान वधीक चइन महीनन ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सके तो, जंहिं सबबि ईरान अमरीका जो दबाव घणे हद ताईं कबूल न करे रहियो आहे। तेहरान जी ॻाल्हियुनि में सुस्तीअ जो सबब बि इहो ई आहे। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चियांग सां मुलाक़ात कंदो। ज़रियनि मूजिब वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ 23 खां 25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते चीन वेंदो। पाक चीन लाॻापन खे 75 साल मुकमल थियण ते थींदड़ तक़रीबुनि में शिरकत बि कंदो। वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाकिस्तान ऐं चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते सयूं बि थींदियूं। सीपेक ऐं वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ते बि ग़ौर वीचार कयो वेंदो।

IMF सरकारी इदारनि जी निजकारी ऐं सुधारनि वारो अमल तेज़ करण जो मुतालबो करे छॾियो। बिजली, गैस ऐं पेट्रोल जूं क़ीमतूं लाॻत तहत रखण जो मुतालबो। IMF जो विच ओभर में जंग बावजूद पाकिस्तान पारां मुआशी हदफ़ हासिल करण जो बेतराफ़। हलंदड़ साल पाकिस्तान जी तरक़ीअ जी शरह 3.6% ताईं रहण जो इम्कान ज़ाहिर। IMF जी एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान जी मुआशी प्रोग्राम लाइ 3 जाइज़े जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। IMF पारां जारी पधराई मूजिबि पाकिस्तान में बेरोज़गारीअ जी शरह 6.9% ऐं महांगाईअ जी शरह 7.2% रही सघे थी। टैक्स नेट खे वधाइण वारनि कोशिशुनि में बि तेज़ी आणण जी ज़रूरत आहे। भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी पाकिस्तान खे दुनिया में नई सुञाणप ॾिनी आहे। अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करण जो बि वॾो सबबु भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी आहे। लाहौर में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त दुश्मन खे हक़ वारी जंग में शिकस्त ॾिनी, हाणे तरक़ीअ वारी जंग में कामयाबी माणणी आहे। तरक़ीअ वारी जंग न खटी त हक़ वारी जंग में मिलियल कामयाबी बि घणी देर बरक़रार रखी न सघंदासीं। इस्तेहकाम लाइ मज़बूत मैशत ज़रूरी आहे।

कवारी जंग में कामयाबीअ खे साल मुकमल थियण ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं। कराची में डॉक्टर्स जी NICH खां जना अस्पताल ताईं रैली। पाक फ़ौज खे भेटा पेश। टंडो मोहम्मद ख़ान में पुलिस जवाननि पारां जंग में कामयाबीअ खे साल मुकमल थियण ते रैली कढी वई। पनियाकिल में बि पाक फ़ौज जी हिमायत में रैली। खैरपुर में बि मेडिकल कॉलेज खां सिविल अस्पताल ते रैली कढी वई। लाड़काणे में तालीम खाते पारां जंग में कामयाबी जी खुशीअ में रैली कढी वई। पीर जो ॻोठ में बि मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि पारां रैलियूं कढियूं वयूं। भारत खे बर्तनाक शिकस्त ॾियण ते पाक फ़ौज खे भेटा पेश।

0: हक वारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते सिंध के जेलन में भी तकरीबू मुनक़िद। सेंट्रल जेल सखर में हक वारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते शानदार तकरीब। जेल अमले ऐं कैदियुनि जी शिरकत। खैरपुर जे डिस्ट्रिक्ट जेल में बि भारत खे शिकस्त ॾियण ते पाक फ़ौज खे भेटा पेश करण लाइ तकरीब कोठाई वई। हैदराबाद जे सेंट्रल जेल में बि हक वारी जंग में कामयाबी ते तकरीब थी। इंतज़ामिया ऐं कैदियुनि जी शिरकत। मलीर जेल में बि हक वारी जंग में कामयाबीअ खे साल मुकमल थियण ते तकरीब पाक फ़ौज खे भेटा पेश।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मुझे भी यूं ही हाल हो।
1: खबर ना है तो वहाँ ही सब कुछ किया क्यों नानी। माता एतरो थकी थी पवा छा कयो होता।

0: ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अपने ख्वाबों के लिए लड़ना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है,

0: leđna, ako mu je habodena. Ome ja svoj četvrt.
1: मैं तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

रोशन चेहरो पहरे इस्तेमाल में फर्क महसूस करो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का है सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

जाने जहां देखिए 22 दिसंबर से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

पिलिंग कैनाल हज़ार चार क्यूसिक पानी खड़न लगो। इरसा में सिंध के नुमाइंदे मामले ते करे वरती। ज़रियन मूजिब तकरारी कैनाल खोलण लाइ पंजाब हुकूमत इरसा का इजाजत भी ना वरती। पंजाब पारा बिना इतला के तकरारी कैनाल्स मां पानी खड़न बाद सिंध में पानी बोरान संगीन थी वयो। आबादगार सख्त परेशान।

0: सर्विस कमीशन में पंहिंजा नवाज़ी ऐं मेरिट जी रटण नामंज़ूर। मुतासिर उम्मीदवारनि जी तहरीक तेज थी वई। गडियल चिटाभेटी इम्तिहान में शिरकत कंदड़ उम्मीदवारनि जो लाॻीतो बेदी हैदराबाद में एहतजाज। मुतासिर उम्मीदवारनि गुज़िरियल ॾींहनि सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ऑफिस साम्हूं धरणो हयो, अॼु ॿिए ॾींहुं बि एहतजाज कयो वियो। मुतासिर उम्मीदवारनि जो चवणु आहे त 2024 जी गडियल चटाभेटी इम्तिहान में मेरिट जी रताड़ कई वई। ॻाल्हि फेल थियण जी न पर सिंध जे मुस्तक़बिल जी आहे। नतीजनि जी ॿीहर जांच कराई वञे। मेरिट ऐं हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ जिदोजहद जारी रहंदी। मुतालबा तस्लीम न थिया त एहतजाज जो दायरो वधाईंदासीं। पंहिंजनि हक़नि ख़ातिर अदालत जो दर बि खड़काईंदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे। हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, जंहिंमें शामिल आहे SPF 30, सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी, ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन, जेके ॾियनि तव्हांजे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो। रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो, नओ एतमाद। हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो, हिकु नओ कॉन्फिडेंस। हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे। हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, जंहिंमें शामिल आहे SPF 30, सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी, ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन, जेके ॾियनि तव्हांजे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो। रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो, नओ एतमाद। हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो, हिकु नओ कॉन्फिडेंस। हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।

अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोर्टिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बुटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाउ लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: अजय दोस्तों हेमे ब्यूटी शो में शमन मिराली की आवाज में तमाम प्यारो गानो अमा बुधियो उम्मीद आए तवां के पसंद आयो हुंदो सो लेट्स सी अगते तवां जिला अन्या मावटे तमाम प्यारा प्यारा गाना अथव मजो थी वेंदव इन थदी थदी मुंद में बाकायदा तौर से थदड़ी थदड़ी हवा हली रही है उम्मीद आए तवां मच बारी करे इन जा जेके न तमाम घणियों एहतियात कंदा हूंदो इन मुंद जा ठीक है सो अवां की खबर आ दोस्तों तो प्रोग्राम में सेगमेंट आए सॉन्ग सुन एक भेर बीहर म्यूजिक प्ले क्या पे तुम या सुणे बुधाई तो कड़े गाने की म्यूजिक आ ठीक है बुध सभी गौर सा

0: त दोस्तों याद आमो के सुनाने बुधायो केड़े गाने जी म्यूजिक आए सो व्हाट्सएप जी तरफ मां अगर वन्या थे व्हाट्सएप ते मोके तमाम घणी दे सेल्फी मिली आ असने तमाम प्यारे लिसनर जी केड़ो लिसनर थी सके तो आके खबर आ आइन जो वॉइस नोट भी आयो आ जको मां प्रोग्राम में शामिल कंदुस अशरफ अली मीराली साहब आए जे मुझे ख्याल में चौथी डबी वरती आए है में ब्यूटी क्रीम जी आई माशाल्लाह स्किन सफाई जवां जवां लगी पई आए साईं जन जी साईं मेहरबानी अवां जी मोहब्बत ये असल में अवां जी सेल्फी न अवां जी मोहब्बत हुंदी जे की मुझे तमाम घणी वणंदी आए सो इन जो वॉइस नोट आए अचो बुधूं पिया
1: وعلیکم بابر بادشاہ اللہ خوش آئے مامی تے کہندو اواں جتے ہوندا خوش ہوندا رب پاک دی امان میں ہوندا با ما ویلے جوان بشام یوسی وی کسانگی ڈسٹرکٹ کلرک نا گا اشرف علی میر علی تو بنایا باجی تے کلا گل کی اسے تمام ایمی بیوٹی کریم متی ا تے دفعہ اول سیلفی سین کر چکو ہاں چوتھی سیلفی اج سین کر رہا ہاں سو اساں تانے موکلیو پیا تھا ای جو پروگرام ا ब्यूटी क्रीम वाले तवन से इलाही सुठो आ खास कर कंपेयरिंग में वह भी काबिल तारीफ आ क्रीम आई तो पांच मट पा बिल्कुल लाजवाब आ वेरी गुड आ वी आई पी प्रोडक्ट आ जबरदस्त आने रिजल्ट जो तमाम बेहतरीन आ दाग दबा खत्म कर पो उस नुकसानकार शुआन का बचाए पो उन अलावा कुदरती गिलो दे पो जबरदस्त आदंदड़ उम्र जहा सरा जी उन्होंने ते भी बिल्कुल कंट्रोल है इनजो वी वी आई पी रिजल्ट आ सफा भली क्रीम आ काबिल इस्तेमाल आने वाले तेज प्रोग्राम बुधन पा मीराली तनवीर मीराली अलीदर मीराली जो ना हाँ घट को मिले थाने में जन में ही अवेल जडे वही तदे मिले पे प्यारे भा असो वोट वली मोहम्मद रिंदवासी डिस्ट्रिक्ट समीरपुर खास असो इम्तियाज अली भा परवेज बंगलानी साहब आ जावेद बंगलानी साहब आ नंढो बिलाल बंगलानी आ उन्हनि खे मुंहिंजे तरफ़ा खोड़ सारा
0: वालेकुम असलाम अली मदद भाउ तव्हांजी महिरबानी यार तमाम प्यारो फीडबैक तव्हां ॾिनो ऐं तव्हां क़ीमत बि मूंखे ॿुधाई 350 रुपया हाणे थी वई आहे यानी 20 रुपया वधी वई आहे ख़ैर आहे त बाबा तमामु प्यारी प्रोडक्ट आहे ऐं मीराली अशरफ मीराली साहब जेका इस्तेमाल कई आहे बाक़ाइदा तौर ते पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कई हाणे इट्स अप टू यू तव्हां इन जे ऐं इन खां अलावा जेके काफ़ी सारा एक्सपीरियंस असां सां शेयर कनि पिया हेमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करे तव्हां हुन जो केतिरो फ़ाइदो वठो पिया इहो वरी अव्हां जे मथां आहे ऐं हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम हर फर्द लाइ यानी अदा हुजनि या अदड़ी हुजनि हर टाइप जी स्किन लाइ यकसां मुफ़ीद आहे तव्हां हिन खे आज़माए सघो था ऐं विद इन 7 डेज़ तव्हां इन जो रिज़ल्ट महसूस कंदव तव्हां पाण चवंदव यार बाबे भाउ 20 त छा भले 500 बि वधाइनि असां तॾहिं बि वठंदासीं अहिड़ी प्यारी प्रोडक्ट आहे हेमे ब्यूटी क्रीम छाकाणि त हेमे हेमे आहे ठीकु आहे अचो त तव्हां गानो ॿुधायां अहमद मुगल जी आवाज़ में तमामु प्यारो प्यारो ऐं इंजॉय करायां ॿुधो ऐं मूंसां गॾु रहिजो पूरे 8 वॻे ताईं

हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आरबुटीन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

0: अजय दोस्तों बिल्कुल हेमे ब्यूटी शो में बाबर शेख हवासा गड्डा है अज जो सेगमेंट है सॉन्ग सुन्याण है सॉन्ग सुन्याण में आज मां म्यूजिक लेकर आया तुम्हारा वहां मुझे सुन्याण बुधा था केड़े गाने जी म्यूजिक है ठीक है प्रोग्राम में शामिल थे से लाइव कॉल है व्हाट्सएप पे असंगे ज्वाइन करी सको था नंबर आ है 03000113488 फेसबुक ते बुद्धि सगो था असो फेसबुक पेज आए GAFM आई सिंपल मैसेज सेंड करे सगो था उन जराय पेंजे मोबाइल जे राइट मैसेज ऑप्शन में वनियो SKR लिखो स्पेस दियो पेंजे मैसेज 8881 यानी 8881 दे वहां सेंड करे छियो सो दोस्तों बिल्कुल हियर कुछ वॉइस नोट्स है ना बल्कि कुछ ने इलाही सारा वॉइस नोट्स इकट्ठा थी है जे मैं प्रोग्राम में शामिल कंदस आई आ बुधंदो तही छ पचवन
1: हाजिर
0: महेसर साहब कल जो प्ले कर मामा बुध या कौन बुधायो मुख्य बुधाई जो तुम ठीक सो एक वॉइस नोट अथव
2: अस्सलाम वालेकुम बाबा भाई छाला खुश आयो खैरा बाबा भाई माजी दली गलाया तो पनवा अकेल मो मां मुझे वालिद साहब है मुझे भात अल्लाह ताला डाडा वडा फैन आयो हेमी ब्यूटी क्रीम मां यूज कई तमाम बेहतरीन उन जो रिजल्ट बस मां ताके चवन चनो
0: ताज इयो ही चवन मुखे डाडो वणियो ताज मेहरबानी ताज बाबा साईं के भी भली कार ताज ब्रदर के भी भली कार हिन हेमे ब्यूटी शो में थैंक यू अदा ताके गानो तो बुधरे एकडो भलो भलो ठीक आही बुधो गानो
3: एकदम बाबरबा चाला खैर अल्लाह खैर कयो थद तमाम असन कच्चे
0: लाडिया
3: अल्लाह ताके खुश कंदो हेमे ब्यूटी क्रीम लगायो बिया लगाईदासी पंज रिजल्ट पंज छे पाणा पंजो मट पाणा उनजी रिजल्ट भली आ जबरदस्त आ असा यूज कयूं पिया एम ब्यूटी क्रीम पंजो मट पाणा उनजी खुशबू पंजो मट पाणा उनजी छा गाल कजे जेतरी गाल करे मानू एम ब्यूटी क्रीम जी तोरी आ मां या गुलाम अहमद कोराई मुंजा दोस्त मंताज कोराई मसरूर अहमद उर्फ मिठू कोराई गुलाम मुस्तफा कोराई आ
0: प्रोग्राम में शामिल ही वॉइस नोट
4: अस्सलाम वालेकुम बाबर जानी खैर त्यार जोर सदाम प्रोग्राम सलीम मरी हमजली मरी अत्तर मरी अलियार मरी
0: ओके अदा तांज मेहरबानी तो दोस्तों हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जो एकड़ो इहो

0: त उहे बि दूर थी सघनि था। जी हा, इहा दावा कई आहे हैमे नेचुरल्स वारनि, ऐं हैमे नेचुरल्स वारनि जी इहा प्रोडक्ट जिन इस्तेमाल कई आहे न, स्टिल तव्हां पाण ॾिठो आहे त तक़रीबन 3 महीना मुंहिंजे ख़्याल में मुकमल थियण वारा आहिनि या थी चुका आहिनि। अञा ताईं को अहिड़ो फीडबैक न आयो आहे जंहिं चयो यार असां हैमे बीट क्रीम इस्तेमाल कईसीं पर रिज़ल्ट न मिलियो। सभिनि पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ॾिनो आहे, पॉज़िटिव फीडबैक ॾिनो आहे, उन्हनि सभिनि इहा ई ॻाल्हि कई आहे त असांखे सुठो रिज़ल्ट मिलियो आहे हैमे ब्यूटी क्रीम जो। मार्केट में ॿियूं प्रोडक्ट हिकु पासे, पर हैमे ब्यूटी क्रीम जो रिज़ल्ट हिकु तरफ़ आहे, छाकाणि त इन में जेके इनग्रीडियंट शामिल आहिनि SPF 30, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी, आर्बुटीन, ई कमाल जा करन स्किन के स्किन ते दिखारे, तव्हांखे रिजल्ट मिली सघे थो।
1: आई एम विरेज वान भशायूं यूसी के असांगे डिस्ट्रिक्ट लाकाना खां तनवीर अली मिराली ॻाल्हाए रहियो आहियां। ही जेको प्रोग्राम हली रहियो आहे हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे तावन सां सो ज़बरदस्त हली रहियो आहे। असां इंजॉय कंदा आहियूं, हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम बि ज़बरदस्त आहे, उन जी रिज़ल्ट बि भली आहे। ऐं असांजे ॻोठ में त जिते किथे हैमे लॻी पई आहे, उन जो शोध रिज़ने वारनि जेके इहा दावा कई आहे उहे पंहिंजी दावा ते बि लथा आहिनि। मतिलब प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहिनि अशरफ अली मिराली, अब्दुल जवाहर मिराली, साजन मिराली, नंढो अली जय मिराली, आयान मिराली, भगन मिराली, ममताज मिराली, घोट वली मोहम्मद खां, चाचू इम्तियाज बंगलाणी, चाचू परवेज बंगलाणी, चाचू जावेद बंगलाणी, ऐं असांजा दोस्त आहिनि ज़ाहिद बंगलाणी, शिवाज बंगलाणी, बिलावल बंगलाणी खे असांजे तरफ़ खां खोड़ सारा सलाम या अली मदद।
0: वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद भाउ, तव्हांजी महिरबानी, प्रोग्राम में शामिल थिया ऐं तव्हांजो फीडबैक मूंखे ॾाढो वणियो। ऐं हैमे ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल करे जेको तव्हां रिज़ल्ट शेयर कयो आहे, उमीद आहे असांजा लिसनर जेके ॿुधनि पिया तव्हांजो आवाज़, उहे फ़ाइदो वठंदा। बिल्कुलु दोस्तो, त दोस्तो बिल्कुलु हींअर हिकिड़ो ॿियो वॉइस नोट शामिल कंदुसि, पोइ अव्हांजा जेके 8881 वारा मैसेजिस आहिनि उहे मां शामिल कंदुसि। पर अञा ताईं यार कंहिं मूंखे सॉन्ग सुञाण में जेका म्यूज़िक प्ले कई आहे न, कंहिं बि न सुञाती आहे यार। वॾी ॻाल्हि न आहे, एॾी ॾुखी त न आहे, तव्हां सुञाणे त ॾेखारियो, सुञाणे ॿुधायो त कहिड़े गाने जी। हिकिड़ो ही वॉइस नोट ॿुधो।
2: अस्सलाम वालेकुम मवर भाउ, ख़ुशि आहियो, तबियत ठीकु आहे? लाड़काने खां हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन भारी जो प्यारु कयां। प्रोग्राम तव्हांजो ॿुधूं था, माशाला ॿुधण में ॾाढो बहितरीन थो लॻे, ॾाढो सुठो प्रोग्राम आहे। दोस्तनि खे सलाम ॾींदुसि, सभ खां पहिरियां ताज मोहम्मद मरी खे, खोड़ा शरीफ वारे खे खोड़ा सारा सलाम ऐं दुआऊं, ऐं सूफ़ी इम्तियाज़ मित्रो साहब, फौजी रसूल बख़्श मरी साहब, ऐं तव्हांखे खोड़ा सारा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम अदा, तव्हांजी महिरबानी। अच्छा, मां जेके लाइव कॉलर्स आहिनि उहे मां जेको हाणे गानो प्ले कंदुसि, हुन खां बाद जस्ट लाइव कॉल्स हूंदव प्रोग्राम में, ठीकु आहे? मां हींअर नंबर ऑन न कयो आहे, पोइ नंबर ऑन कंदुसि, त पोइ तव्हां ट्राई कजो, तव्हांजी वधि खां वधि कॉल शामिल कंदुसि। लाइव कॉलर्स मायूस बिल्कुल बि न थियनि, असां सभिनि जो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, इनशाला सभिनि खे मां शामिल कंदुसि, ठीकु आहे? अच्छा, हैमे ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांखे नथी मिले न, त उन्हनि खे तव्हां नथा ॿुधायो न हैमे ब्यूटी क्रीम वारनि खे, त इहे तव्हांखां मायूस थी सघनि था, इन जे लाइ हिननि खे बि मायूस न कयो, ठीकु आहे? इन जो नंबर अथव, ॿ नंबर आहिनि, हिकिड़ो नंबर न खणे कॉल त ॿिए नंबर ते तव्हां कॉल करे सघो था। नंबर आहिनि 0336713547 ऐं ॿियो नंबर आहे 0313362265, ठीकु आहे? इहे ॿई नंबर अथव, हिकिड़ो नंबर कॉल न खणी, ॿिए ॾे कयो, ॿियो न खणी, त पहिरीं ॾे कॉल कयो, हिननि खे चओ त बाबा असांजो ही शहर आहे, ही इलाइक़ो आहे, ही ॻोठ आहे, हिते अञा ताईं भला हैमे ब्यूटी क्रीम न मोकिली अथव, ख़ैर त आहे, छो न मोकिली अथव? ही तव्हांखे ॿुधाईंदा त छो न मोकिली आहे। सो हिकिड़ो न बल्कि जेके वॉइस नोट्स आहिनि मां कोशिशि कयां पई शामिल करे, पोइ गाने जी तरफ़ हलां, पोइ तव्हांजी लाइव कॉल्स हूंदव सिर्फ़, पोइ नो वॉइस नोट, ठीकु आहे? ऐं पर सेल्फी तव्हांजी हुजनि ई हुजनि। ही तमामु प्यारी हथ में हैमे ब्यूटी क्रीम आहे, इन्हनि जी केर आहे? मोहम्मद अली महर, जहानपुर शरीफ मां बात कर रहा हूं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं भाई? और महर साहब, आपकी ये हैमे ब्यूटी क्रीम की जो सेल्फी आपने भेजे ना अपने हाथ की, आपका हाथ भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आपने अपना वॉइस नोट नहीं सेंड किया, चले इट्स ओके, आपकी मेहरबानी। आई दोस्तों बिल्कुल एकड़ो बियो मां शामिल कर दो मैसेज। अच्छा, 9000001134888 तवाने नंबर ते असांगे व्हाट्सएप ते ज्वाइन करे सको था, एकड़ो ही वॉइस नोट।
3: अस्सलामुअलैकुम, मां गोठा जी अली मुराद खास के लिए आसिफ अली खास के लिए तो गल तो प्रोग्राम जबरदस्त था, तानी हैमे ब्यूटी क्रीम जबरदस्त था, तानी प्रोग्राम में आसिफ खास के इंजॉय तो करे, आई मुखे मन मुगले यो गानो बुधरा, अच पखीड़ा अच मुझे सदत अच लख थोड़ा थिना भाजा।

0: ऐं हर जाइ एम एम ए लॻी पई आहे ऐं मुंहिंजा कुझु भाउर आहिनि आशिक हुसैन ख़ासि करे मोहम्मद अशरफ ख़ासि करे फिदा हुसैन ख़ासि करे
1: ओके दादा हींअर जो मां जेको अहमद मुगल प्ले कयो तव्हां न ॿुधियो छा अच्छा हिकिड़ो ही वॉइस नोट पए अथव पोइ बाबा गानो अथव ठीकु आहे ॿुधो
2: अस्सलाम वालेकुम गोठ फतेह खान सियाल खां बकरार अब्दुल हकीम सियाल वेरी नाइस एम ए नेचुरल ब्यूटी क्रीम वेरी नाइस शो एम ए नेचुरल ब्यूटी क्रीम हर हंध दस्तियाब आहे 340 रुपए जी मिले थी असांखे स्वाग ॿुधायो मुनवर मुलाए जो मच कचहरी में असां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं था पिया वी आई पी प्रोग्राम हले थो पियो असां सां गॾु आहिनि मोहम्मद यासीन सियाल नज़ीर अहमद सियाल नंढड़ी तबसुम सियाल
1: चलो अदा तव्हांजी महिरबानी तमामु प्यारो फीडबैक तव्हां ॾिनो ऐं तव्हांजी यार सेल्फी छो न आई आहे भला ख़ैर त आहे सेल्फी मोकिलण में तव्हांखे जेका कहिड़ी तकलीफ़ थी थिए ॿुधायो अच्छा हीउ गानो मां तव्हां सभिनि लाइ प्ले कयो आहे गानो ॿुधो इंजॉय कयो मूंसां गॾु रहो हेमे ब्यूटी शो में 8 वॻे ताईं हिन गाने खे बाद में जेको आहे न मां ईंदुसि त तव्हांजो जस्ट लाइव कॉल्स ऐं 888 वारा मैसेजिस हूंदव ठीकु आहे

0: नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: अजय दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त गानों तुम बुधे उम्मीद है तुम पसंद आयो हों सो इन अलावा हिंसर में लाइव कॉल्स इंक्लूड कंदुस आई 888 वारा मैसेजेस एज वेल एज ठीक है विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो मोहम्मद हारून संदीलो अब्दुल हमीद संदीलो फ्रॉम मोरो खां गोट होत खां लुंड खां सादिक अली लुंड मजर बलोच अदाबाबर शेख गौराख में बर्फ पई आई हेमी ब्यूटी

0: ठीक आहे दोस्तों, हींअर मां लाइव कॉलर जी तरफ हलंदुसि ऐं ॾिसूं था लाइन ते कहिड़े केरु आहिनि. हाणे नो वॉइस नोट्स, ठीकु आहे, फर्दड़ मां वॉइस नोट्स शामिल न कंदुसि, जस्ट लाइव कॉल. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: साईं केरु था ॻाल्हायो?
1: शहज़ादो
0: सोरेड़ो साहब, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? अलाह जो शुक्र आहे. शहज़ादो साहब, म्यूज़िक प्ले कई आहे, कहिड़े गाने जी आहे? अबोल मारे छॾियो. कहिड़ो ज़िलो आहे तव्हांजो?
1: ज़िलो घोड़की खानपुर बार खां.
0: अच्छा, परे आहे. ठीकु आहे, चलो ठीकु आहे, मां गानो थो तव्हांखे ॿुधायांव. ठीकु
1: आहे, महिरबानी.
0: ओके सरोड़ो साहब, तव्हांजी महिरबानी ऐं प्रोग्राम में शामिल थिया. अच्छा, जिन वटि नशियात घटि अचे पई त उहे फेसबुक ते बि ॿुधी सघनि था. GAFM असांजो पेज आहे, उते लाइव मां अचां पियो. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: अदा केरु था ॻाल्हायो?
2: जी जी,
0: केरु था ॻाल्हायो भाउ?
2: इस्माइल जेतो थो ॻाल्हायां, शिकारपुर खां.
0: इस्माइल, छा हाल
2: आहे?
0: अलाह जो शुक्र आहे. सी थिए थो इस्माइल? हा
2: हलो
0: इस्माइल, आवाज़ नथो अचे मुंहिंजो,
2: घटि त ध्यानु ई अचे थो.
0: अच्छा ॿुधाए, कहिड़ो म्यूज़िक आहे, कहिड़े गाने जो आहे, कहिड़ो गानो आहे, भला ॿोल कहिड़ा आहिनि? हल ठीकु आहे, महिरबानी अदा इस्माइल.
2: ओके
0: त इस्माइल वटि मूंखे लॻे पियो सी ॾाढो हुयो त मुंहिंजो ध्यानु सीअ खां बचण जे पासे में वियो. बहरहाल का ॻाल्हि कोन्हे अदा इस्माइल, ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां मूंखे ज्वाइन कयो. सो हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कयूं पिया, ॾिसूं था लाइन ते केरु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. यार मुंहिंजो आवाज़ अची वियो पियो? सही थो हुजे फोन ते आवाज़?
2: जी जी.
0: सफ़ा VIP.
2: VIP.
0: नालो ॿुधायो.
2: इम्तियाज़.
0: हा, छा हाल आहे इम्तियाज़ भाउ?
2: अमन ख़ैर.
0: अॼु फर्स्ट टाइम पाण फोन ते पिया ॻाल्हायूं, ईअं न?
2: जी,
0: चलो अॼु तव्हांजी कॉल लॻी आहे, कीअं पियो लॻे प्रोग्राम ऐं हेमे ब्यूटी क्रीम जो छा रिज़ल्ट आयो मां वटि?
2: सर इस्तेमाल बराबरि में जनरल स्टोर उते मिले थी,
0: चलो गुड आहे साईं, तव्हांजी महिरबानी. अच्छा मां म्यूज़िक प्ले कई आहे, बंगलाणी साहब कहिड़े गाने जी आहे? यार ॾाढी सवली आहे. बहरहाल ॿुधायो त तव्हांजे लाइ जेको आहे मां जेको आहे, अच्छा कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदव असांजे सामान खे या दोस्तनि खे सलाम ॾियणु चाहींदव?
2: दोस्तनि खे मुंहिंजो पैगाम इस्तेमाल करे साफ़ सुथरो करे थी, चोरी जो चंड करे थी, कहिड़ो सुठो आहे तव्हां वञी वठिणो त हींअर सर्दी जे मौसम आहे, गर्मी घटि आहे, चेहरे खे लॻाईंदा कहिड़ो VIP थींदो, इहो मुंहिंजो रिक्वेस्ट आहे, गुज़ारिश कई आहे सभिनि खे, मां तव्हां वञी वठो मुंहिंजा कुझु दोस्तनि आहे, आर्टिकल दोस्तनि खे.
0: जी जी, शामिल कयो.
2: काठड़ी खां त गुलाम रसम मरी यूथ तबीर अली मिराली, मुंहिंजो दोस्त अशरफ मिराली खे सलाम हुजनि, बिलावल अली सलाम.
0: चलो वालेकुम अस्सलाम अदा, तव्हांजी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ. त दोस्तो बिल्कुलु, असांजा तमामु घणा प्यारा लिसनर्स आहिनि जेके प्रोग्राम में ज्वाइन कंदा आहिनि, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे. ऐं इन्हनि जी तरफ़ा जेको फीडबैक हूंदो आहे न, हेमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कंदड़ आहिनि त जेको फीडबैक ॾींदा आहिनि न, मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे इहा नंढड़ी त इहो तव्हां जेको आहे न फीडबैक मां तव्हां फ़ाइदो वधीक खां वधीक हासिल कयो. ठीकु आहे, सो लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर केरु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम.
0: अदा केरु था ॻाल्हायो भाउ? लाशारी साहब, नालो ॿीहर ॿुधायो.
3: कमल खान लाशारी.
0: शमन
3: कमल. हमन.
0: अमन.
3: जी जी, हमन. हमन.
0: हमन, ठीकु आहे. अदा इहो ॿुधायो त जेका म्यूज़िक प्ले कई आहे कहिड़े गाने जी
3: आहे?
0: छा आहिनि इहो
3: सॉन्ग? जामिन अली
0: न साईं, जामिन अली कोन्हे. हलो का गाल कोने मां जेको आ त हियर जेको आखिर में प्ले कंदो मां बुध जो आई अडे जेको तकरीबन के भी सही जवाब न नो आ स्टिल आई मां दिसा पियो त के सही जवाब दे पियो या न सो का गाल कोने अगर ता सही जवाब न वीडियो पिया सो मां हियर जेको त लाइव कॉलर की तरफ हलंदस ए दिसू ता लाइन ते गर केर मौजूद आहिन अस्सलाम वालेकुम
4: साईं वालेकुम सलाम बाबर भांगे से क्या तो खैर
0: आला जो शुक्र आदा ता पंजो बुधायो
4: साईं मामा नली किताबी जो गलाया लोगो के लगे बारे ये मामा नली किताबी दा
0: पिताफी साहब शाह आला खैर आ
4: सोना साईं भला आलम का कदा खुश हो जो दा
0: आमीन अदा आमीन पिताफी साहब म्यूजिक प्ले करवाए केड़े गाने जो आ
4: साईं असा के समझ न थी अजी आ ता पानी की
0: सुन सफा समझ में न थी अजी
4: ना साईं ना
0: भला हेमे ब्यूटी केम समझ में आई आ
4: हेमे हेमे आ रही
0: पक्का हेमे हेमे आ
4: हां हां साईं हां
0: हेमे बियो कुछ तो नहीं
4: ना
0: हेमे हेमे आ
4: आ हेमे हेमे
0: आ ठीक आ मेहरबानी साईं शामिल जाता हूं
4: साईं दोस्त
0: जी शामिल करे बैठो
4: साईं अब्दुल लतीफ का जो
0: चलो मेहरबानी अदा तो दोस्तों अन्या तई के भी सही जवाब न दिनो आए सो मुखे लगे तो मां यो गानो प्ले कंदो समाज लाए पोई तमा चिनो यार यो गानो असा के अच्छे पियो डेट असा न करे सग्यासी असा शामिल न थी सके असन जमान असा न बुधाय सग्यासी इट्स ओके अच्छा एकडो ही वॉइस नोट मुजी दिल न पईचे तो मां ने के जो अच्छा इग्नोर किया चाकन ते ने हेमे ब्यूटी क्रीम जी सेल्फी भी मोकली है छापे चवन बुधो
5: इस्तेमाल क्यों जबरदस्त क्रीम आईआईपी रिजल्ट अवेजो चाचो भी यूज कहो मलोटा वो भी यूज कहमद अली मंजूर अमन
0: ओके अदा अयाज तांजी वड़ी मेहरबानी तो दोस्तों बिल्कुल अवां बुधियो ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेके इस्तेमाल कंदड़ आइन उनन जो छा चवणो तो दोस्तों एक दवा बीयर मा तवां के इनन जो पैगाम बुधायो अन्या ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारन दावा कया ते हेमे ब्यूटी क्रीम में एसपीएफ 30 वाइटामिन सी ग्लूटाथायोन कॉजिक एसिड आई बिया केतरी इंग्रेडिएंट्स शामिल आइन जे अवां जे चेहरे जे स्किन के बिल्कुल परफेक्ट नरम मुलायम तरो ताज़ा रखन पाया तो तवान जो फायदो हासिल करे सको था विद इन 7 days तवान के ने जो रिजल्ट मिली सके तो जेकर यहां दे शहर में न मिले तो तवान जे हेल्पलाइन नंबर से कॉल करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करो धड़ा धड़ कॉल्स क्यों तो जी तवान दे शहर में ही इलाके में गोठ में वेजी स्टोर से अवेलेबल कराएं सो नंबर साइन 0336713540 नंबर आ 0313362265 तो म्यूजिक हो जो प्ले करवाए यो गानो जो उनका बोल आन अच्छा सिंगर है यो इकरार वहीद अली बोल आन जे रोज रुसंदे मेड़ा मिलंदा है बुध एंजॉय कर अगले प्रोग्राम ताई पैं मेजबान बाबर शेख के दू इजाजत सदाई गड अला हाफिज़ जिंदगी बखैर

0: हाँ नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: अब चमकती नर्म और बेदाग जिल्द एक क्रीम की दूरी पर हेमे नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम इसमें शामिल है एसपीएफ 30 जो सूरज के नुकसान दिशाओं से तहफ़ दे कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बुटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो हेमे नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम हर दिन हो एक नया ग्लो एक नया कॉन्फिडेंस Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या तभी यार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ वही सघूं था। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में ॿियूं शयूं भी शामिल हूंदियूं।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा पस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा मियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

जाने जहां देखिए 22 दिसंबर से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट

ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: उस्ताद बचायूं दूध पतीवा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

0: अब आप GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज नेटवर्क पर KTN।
1: सिंध में पानी की शदीद खोट दौरान पंजाब तकरारी लिंक कैनाल खोले छड़ा। पंजाब तकरारी सीजी लिंक कैनाल जरिए से कैंटीपी लिंक कैनाल जरिए 7,470 क्यूसिक पानी खड़न लगो। इरसा में सिंध के नुमाइंदे मामले ते खामोशी अख्तियार करे वरती। जरियन मूजिब तकरारी कैनाल खोलने लाए पंजाब हुकूमत इरसा का इजाजत भी ना वरती। पंजाब पारा बिना इतला के तकरारी कैनाल मां पानी खड़न बाद सिंध में पानी बोरान संगीन थी वो। आबादगार सख्त परेशान।
2: अमेरिका ईरान में ट्रंप के वरी ईरान के ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करने की धमकी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में चाहिए त अमरीका ईरान साजिशी कुरियन से गड् शुरूआती माहिदे से कम कर रहा है जै तहत एक महीने ताई गाल फ्रेमवर्क तय किया। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप भी अज ईरान तरफा अमरीकी तजवीजन से जवाब मिलने लाइ पुरुमीद। डोनल्ड ट्रंप है त ईरान से मामला तय न थिया त बीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ वही सकूं था। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में बी श भी शामिल हूंद।
1: पंहिंजो कम करे रहिया आहियूं कंहिं डेडलाइन ते को बि ध्यान नाहे। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त तेहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते गौर करे रहियो आहे। नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं। ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयार आहे। सूरत हाल ते बि नज़र रखियल आहे।
2: ईरान अया भी केतरा ही महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो। अमरीकी उच इदारे CIA ट्रंप इंसामिया के आगाह कर छो। आलमी नशियाती इदारे मूजिब CIA पैंजी नई रिपोर्ट में जाना है त तेहरान चैन महीन ताई अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो। जै सबबी ईरान अमरीका जो दबाव घणी हद ताई कबूल न कर रो है। तेहरान की गालियन में सुस्ती जो सबब भी इो ही है।

पाकिस्तान अमन पसंद रियासत आहे, पर हर जारियत जो भरपूर जवाब ॾियण बि ॼाणनि था। सदर आसिफ ज़रदारी पारां हक़ जी जंग में कामयाबीअ जो हिकु साल मुकमल थियण ते पाक फ़ौज खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी क़यादत खे हक़ जी जंग में कामयाब ऐं मर्कज़ी किरदार करार ॾिनो। पाक फिज़ाया जे सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ऐं जवान जी महारत जी विवाह खां सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पाक बेरिया जे सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ऐं पाक नेवी जे जवाननि ते बि फ़ख्रु आहे। गैर कानूनी तौर भारत जे कब्ज़े हेठि वालारियल कश्मीर जो मसलो ठहराइण मुताबिक़ हल थियणु घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जी इख़लाक़ी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखंदो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे 5.6 जो
1: आवाज़ सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: नजर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क।